0: Get your everyday real diamonds now, because jewelry is meant to be worn, not to be kept inside a locker. Carrot Lane now open next to Tanishq in Frisco.
1: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
2: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali aur saath mein shahar ki best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
1: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
3: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897. Or visit astrologerishwar.com.
4: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
5: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
4: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
5: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
4: और एंटरटेनमेंट,
5: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है.
4: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
5: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
6: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
0: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
6: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
7: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
8: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
7: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
8: Papri chaat se malpua rabri tak. Har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge. Har bite super hit.

नेशन के फन स्टेशन फनिशा रेडियो पर दोस्तों आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है। दोस्तों यू आर लिसनिंग टू द फनिशा नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग नॉन स्टॉप बॉलीवुड एंटरटेनमेंट हियर ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो एंड आल्सो ऑन 104.1 एफएम रेडियो कैरावान। मोर वैरायटी है, मोर चॉइसेस है और मोर फन भी है, ओनली अंडर वन नेटवर्क विच इज फनिशियास नेटवर्क। और दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपके सुरीले जबर के साथ ही आपकी अपनी अपूर्वा स्वागत करती हूं इस खूबसूरत सी संडे की शाम में आप सभी का। एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ और आप भी जुड़े रहते हैं हमारे साथ हमारी फोन लाइंस के जरिए और हमारी बिग फैन टीवी ऐप के जरिए। स्टूडियो के घड़ी में हो चुके हैं 7:05। इस गर्मी वाली शाम में आप सभी को ठंडक वाले गाने सुनवा रही हूँ जो आपके दिल को करार दे, जो आपके दिल को सुकून दे और अच्छी सी ठंडक दे। विद दैट आपको लेकर चलती हूँ अगले गाने की तरफ जो आपके दिल को दे बहुत सारा करार।

Well, दोस्तों आपको तो पता है कि कोई भी अच्छा गाना यहाँ पे जब बजता है तो उसकी दो लाइनें गुनगुनाए बिना तो मुझे तो रहा ही नहीं जाता भाई। वो कहते हैं ना, जी लल जाए रहा ना जाए, वैसी हालत हो जाती है मेरी। और स्पेशली ये वाला गाना, ओ माय गॉड, दिस इज सो क्लोज टू माय हार्ट। आपको बताती हूँ इस गाने की एक फन फैक्ट बताती हूँ। इस गाने के दौरान जब श्रेया जी ने ये गाना इतनी खूबसूरती से गाया है और इतना अच्छा म्यूजिक दिया है इसको अजय अतुल जी ने, तो आपको इस गाने के बारे में एक अच्छी सी बात बताती हूँ। ये जो गाना है इसमें बदमाश ये जो शब्द है ना, वो बहुत ही इमेंसली यूज हुआ है और इसकी एक बहुत ही खूबी है। श्रेया जी कहती है एक इंटरव्यू में, वो बता रही थी कि जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं कि बदमाश वर्ड हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इट्स लाइक बदमाश, लाइक वेरी वेरी यू नो सिंपली हम प्रोनाउंस करते हैं, राइट। बट मुझे ये अजय अतुल जी ने कहा था, बोले कि कुछ तो भी अलग और कुछ तो भी एक अलगपन लेके आइए ये बदमाश जब आप गाएंगी, तो इट्स नॉट, इट शुड नॉट बी साउंडिंग लाइक जस्ट बदमाश, इट शुड साउंड समथिंग डिफरेंट। तो श्रेया जी कहती है कि उन्होंने थोड़ी बहुत सारी कोशिश की और उन्होंने एक अलग तरीके से बदमाश ये शब्द बोलते बोलते उन्होंने बोल दिया कि why can't I sing the word as बदमाश, like you know just a little bit of twist to that word you know ma, usko badmash na kehte hue badmosh main aise bol ke dikhati hu। And unhone kaha ki chaliye theek hai, ga ke sunaiye aur recording kijiye। Aur recording jab unhone ki to oh my god, Ajay Atul ji ne waise hi wo take ko yes kar diya। And the way she sang this song and especially that word badmash is just amazing। It goes like this, बदमाश दे तो ठग है बड़ा, बदमाश दे ये तुझसे जुड़ा, बदमाश दे मेरी सुनी नजद पे अड़ा। Oh my God, such a lovely, lovely track. It was taken from the movie Singham. I hope, दोस्तों आपको शो पसंद आ रहा है। मुझे बहुत सारे कॉल्स आके गए और सभी लोग बोल रहे थे कि अपूर्वा जी आज जो आप गाने प्ले कर रही हो वो सच में हमारे दिल को ठंडक और करार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपके यही प्यार की और ऐसे ही इंस्पिरेशन की हमें ज़रूरत रहती है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू नो दैट यू ऑल आर एंजॉइंग द शो। इसी के साथ आपको लेकर चलती हूँ अगले और खूबसूरत गाने की तरफ। एंजॉय दिस ट्रैक।

अमेजिंग सॉन्ग दोस्तों सुन रहे थे आप शालमली खोलगड़ी की आवाज में, टेकन फ्रॉम द मूवी दावते इश्क। वो जो म्यूजिक का कीड़ा जो है ना मेरे अंदर, वो और वो जो अच्छे गाने का कीड़ा है वो तो भाई जाता ही नहीं है। कोई भी अच्छा गाना उसकी दो लाइनें ना गुनगुनाऊं ये तो अपूर्वा की, ऐसे तो अगर हो जाए ना तो मेरा नाम बदल देना दोस्तों। वेल ऐसे ही अगर अच्छे अच्छे गाने, ब्यूटीफुल गाने और आपके चहीते दिल के करीब के गाने अगर आप कभी सुन रहे हैं और आपका अगर आपकी गाड़ी से वो कहते हैं ना नजर हटी दुर्घटना घटी, ऐसा कोई कभी हो जाए और फिर गॉड फॉरबिड आपका कभी एक्सीडेंट हो जाए, भगवान करे ऐसा कभी कभी भी ना हो, बट लेट्स से इफ यू गेट इन्वॉल्व्ड इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट और स्लीप एंड फॉल इंसिडेंट, अटॉर्नी ओमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कंपेंसेशन दैट यू डिजर्व। डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी स्ट्रेसफुल फॉर ऑल द सिचुएशंस, यू नीड एन अटॉर्नी दैट विल मेक श्योर दैट यू आर कंपेंसेटेड ऑल द टाइम। यू डोंट पे अंटिल यू विन, दिस इज देयर मोटो। सो फॉर अ फ्री कंसल्टेशन यू कैन कॉल देम, द नंबर टू कॉल इज 4693005046 और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज attorneyomar.com। सुन रहे दोस्तों आप मुझे यानी कि आपकी अपनी अपूर्वा को और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। गर्मी वाली शाम में आपको गानों की तरफ दे रही हूँ ठंडक।

मोती मोहन की आवाज में दोस्तों जब तक है जहां मूवी से सुन रहे थे आप ये गाना। गुलजार साहब के शब्द थे, शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ पे पिक्चराइज थी ये मूवी। आई होप आप सभी ने देखी होगी और एंजॉय भी की होगी। भाई अब बारी आ चुकी है आप सभी को एक चटपटा सा गिव अवे देने की। आपको बता देती हूँ दैट हियर इज योर चांस टू विन अ दाल मखनी / ढाबा स्टाइल चिकन करी एट द फ्लेवर लाउंज रेस्टोरेंट विच इज लोकेटेड ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को। दिस गिव अवे इज वैलिड फॉर डाइन इन ओनली। बता देती हूँ दोस्तों ये फ्लेवर लाउंज का गिव अवे जो मैं आपको देने वाली हूँ इट इज वैलिड फॉर डाइन इन ओनली। सो फॉर ऑल द लिसनर्स प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव नॉट वन दिस गिव अवे ऑन एनी अदर शो एट फनीशिया इन द लास्ट वन मंथ। यू कैन ओनली बी अ विनर वंस अ मंथ हियर। देखिए भाई इतनी सारी कंडीशंस है, आपको ये बता देती हूँ कि ये गिव अवे डाइन इन ओनली के लिए ही वैलिड है और ये गिव अवे आपने पिछले एक महीने में कभी जीता नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन है तभी आप मुझे यहाँ पे कॉल करके सही आंसर बता सकते हैं मेरे सवाल का। तो सवाल ये है दोस्तों, ये जो अगला गाना मैं यहाँ पर अभी प्ले करने वाली हूँ आपको मुझे ये बताना है कि ये गाना कौन से मूवी का है। बहुत ही ईजी पीजी सा सवाल है और गाना भी बहुत प्यारा है और ईजी पीजी जवाब है उसका। आपको मुझे ये बताना है कि ये जो अगला गाना मैं यहाँ पर प्ले वाली हूँ वो कौन से मूवी का है। सही जवाब देने वाले को मिल सकता है द फ्लेवर लाउंज की तरफ से दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी। वंस अगेन दिस गिव अवे इज वैलिड फॉर डाइन इन ओनली एंड मेक श्योर दैट यू हैव नॉट वन दिस गिव अवे ऑन एनी अदर शो इन फनीशिया एट इन द लास्ट वन मंथ। इस कंडीशन के साथ आपको गाना पेश करती हूँ। स्टूडियो का नंबर हमारा जो है वो स्पीड डायल पे रख लीजिए 9722355555। अगला गाना ये जो प्ले कर रही हूँ वो कौन से मूवी का है।

0: Thank you so much, Tarun, for calling in and giving the correct answer. This song is taken from the movie Kala. Bahut hi pyara gana. And congratulations, Tarun, for winning the Flavor Lounge giveaway.
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
4: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
5: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम Garland, where every bite is a celebration.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: Ab to karna hi padega, madam.
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: Main shaadi karungi to Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करो।
15: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
16: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
17: वेट, इतना सब और प्राइस?
16: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
18: मैं हीरो।
19: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

मोर म्यूजिक मोर मस्ती और मोर मैजिक के साथ दोस्तों आपको फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। स्टूडियो की कड़ी में हो चुके हैं 35 मिनट्स पास्ट 7। बस कुछ ही चंद मिनटों का सफर बचा है दोस्तों आपका और मेरा, और इसके बाद टाटा बाय बाय कहने का समय आ जाएगा। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे अपूर्वा और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ, जुड़ रहते हैं आप भी हमारे साथ 9702355555 के जरिए। आज की इस बहुत ही गर्मी वाली शाम में आपको दिल को ठंडक देने वाले गाने सुनवा रही हूँ। आई होप आप सभी ने ये शो एंजॉय कर रहे हैं और अभी अगले 30 मिनट्स तक भी एंजॉय करेंगे। चलिए इस एंजॉयमेंट को कायम रखते हैं और अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं।

बहुत ही खूबसूरत गाना दोस्तों, राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में और श्रेया घोषाल की आवाज में सुन रहे थे आप फ्रॉम द मूवी सिंग इज किंग। दोस्तों आप मुझे बताइए दैट हाउ मच टाइम डज योर डॉक्टर स्पेंड विथ यू, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स? एट पैशन हेल्थ केयर एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स, बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम, बिकॉज एट पैशन हेल्थ केयर यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, योर फैमिली, फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आर कम्युनिटी, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज देयर। दिस इज नॉट ऑल एंड पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज ग्रोइंग, दे आर नाउ हायरिंग एक्सपीरियंस प्राइमरी केयर डॉक्टर्स, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, पेडिट्रिशियंस एंड साइकियाट्रिस्ट फॉर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज। इफ यू आर पैशनेट अबाउट पेशेंट केयर, सेंड योर रेज्यूमेज टू पैशन हेल्थ फिजिशियंस एट gmail.com और यू कैन टेक्स्ट देम, द नंबर टू टेक्स्ट इज 217-454-46 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। विजिट पैशन हेल्थ physicians.com और कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ इज आर पैशन।

ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट दोस्तों, इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 7:54। यही कहूंगी, वक्त हो गया है मेरे जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आज की शाम साथ निभाने का। दोस्तों, आपके साथ से ये सफर बहुत ही खूबसूरत, सुरीला और सुहाना होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और ये फन एशिया रेडियो का स्टूडियो मेरी हैप्पी प्लेस है। यहाँ पर आकर मैं जितनी हैप्पी हैप्पी होती हूँ, उतना ही हैप्पी हैप्पी आपको बनाने की मेरी इच्छा आकांक्षा और मनोकामना रहती है। With that, live fully, love passionately and laugh loudly. लेती हूँ आप सबसे विदा इसी थॉट के साथ और करती हूँ नेक्स्ट संडे सेम टाइम सेम शो सेम चैनल ऑन 104.9 FM पर मिलने का वादा। This is your host RJ Apurva signing off for tonight. दोस्तों, छोड़े जा रही हूँ आपको ये अगले गाने की तरफ, आने वाली है प्रेम मेरी बात, तो आप उनको भी सुनिए, उनका भी हौसला बढ़ाइए। Till then, bye bye and good night.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
4: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
5: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
4: नहीं।
5: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
4: नहीं।
5: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
4: वो भी नहीं।
5: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
6: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
7: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
8: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
9: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
10: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
9: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
9: सच में? सब संभाल लेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770। वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

0: Welcome, ladies and gentlemen, and hello to everybody in Dallas-Fort Worth area. Ghamasan garmi shuru ho chuki hai. I hope you, ladies and gentlemen, are hydrating yourself. My God, 96 degrees outside today in the afternoon. Aisa laga ke ye kya ho gaya? And it's still the month of June. July baki hai, August baki hai, thoda sa September bhi baki hai. So hold on, guys. We have to survive this amazing summer. This is the Sunday Pop Station with RJ Prem. आपको तो पता ही है हमारा जैम 8 से लेके 9 बजे तक का, वेर वी प्ले अमेजिंग सॉन्ग्स फ्रॉम द पॉप जॉनर. दैट मींस सॉन्ग्स फ्रॉम द एल्बम्स एंड नॉट फ्रॉम द मूवीज. एंड फिर 9 बजे से हम बजाएंगे हमारे ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स फ्रॉम द 90s, 2000s एंड इवन टुडे. लेट अस नो योर जैम. 972-235-5555 इज द स्टूडियो का नंबर. दो तीन गाने मुझे ऑलरेडी डीएम पे आ गए हैं तो मैं वो बजाऊंगा, बट उसके बाद आपके गाने और आपको शाउट आउट मिल जाएगा. 972-235-5555. This is RJ Prem bringing the Sunday Pop Station only on the airwaves of Funasia.
1: O chanati kuri, o chanati kuri,

नी तू जट नू पसंद होगी गर्मी च ठंड होगी मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी तिरछी नजर तेरी आशकां लई पंग होगी।

चन दी कुड़ी बदलां दी भैण सर तेनू बिजली बिजली कैन जिदे उत्त गिरदी बचदा भी कख नी तारे भी डर के रहन।

लेडीज एंड जेंटलमैन, हेडिंग टुवर्ड्स अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. कहीं जाएगा नहीं क्योंकि आपका और मेरा साथ रहेगा ठीक 10 बजे तक. दिस इज द संडे पॉप स्टेशन विद आरजे प्रेम. आई विल सी यू ऑन द अदर साइड.

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Panacea
1: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
2: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
1: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
2: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाय सुपरहिट
3: छोटा सा मेरो मदन गोपाल
4: DFW Hindu Temple cordially invites you and your family to a week of divine devotion and spiritual enlightenment through the sacred Srimad Bhagavat Katha. From June 28th through July 4th, 2026, experience the nectar of Bhagavatam as it is beautifully narrated by the world-renowned devotional singer and spiritual orator Acharya Shri Mridul Krishna Goswami Ji, Pramukh Seva Adhikari of Shri Bake Bihari Mandir, Vrindavan. Mahaprasad will be served daily for all devotees. For more information, visit dfwhindutemple.org. Jai Shri Krishna.
5: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Funasia Radio.

सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का।

आंखों से हटाया चश्मा आंखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी, अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी, उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ

क्या अमेजिंग कॉन्वर्सेशन हुआ यार लेडीज एंड जेंटलमैन. आई होप यार कभी मुझे मौका मिले यार ऐसे कॉन्वर्सेशंस ऑफ एयर जो होते हैं वो मैं ऑन एयर भी लेके आऊँ. हालांकि ऑफ कोर्स देयर आर लिसनर्स हु वांट टू लिसन अ सॉन्ग एंड नॉट अ फोन कॉन्वर्सेशन, बट आई जस्ट स्पोक टू एन अमेजिंग जेंटलमैन हु टोल्ड मी प्रेम भाई वॉकमैन के जमाने याद आ गए. अभी मैं किसी अपने नए किड्स जनरेशन अल्फा और जनरेशन जी को बोलूँ वॉकमैन और डिस्कमैन, वो बोलेंगे ये क्या होता है भाई. They would never understand, but those were the days where we had such amazing, amazing memories. Because Walkman ka best, pata hai best part kya tha? There were no ads, there were no commercials. Cassette dalo aur back to back wo gaane suno. That was the time, man, yaar. Wow, thank you so much, ladies and gentlemen. Bahut maza aa raha hai. Keep him coming. 972-235-5555 is the studio ka number. Sandeep ne mujhe call karke bola, Euphoria ka gaana to banta hai, yaar. Pop segment hai aur Euphoria ka gaana. ना बजे ऐसे कैसे हो सकता है. आई एग्री मायरी फ्रॉम यूफोरिया द वेरी टैलेंटेड पलाश सेन एंड हिज बैंड.

I just completely lost his name. Ladies and gentlemen, welcome back. This is RJ Prem bringing the Sunday Pop Station. Ek bahut hi zabardast viral ho gaya hai gana. Can you imagine? It's an AI generated song. Yes. Aur ye gana isliye viral hua kyunki India's Got Latent ke episode pe aaya jisme Alia Bhatt aur Sharwari aayi. Agar aapne wo episode nahi dekha hai to highly recommend. It's the season 2 here. Aur uska ek gana mujhe abhi कॉलर ने मुझे कॉल करके बोला यार आप प्लीज वो गाना बजा दीजिए लोगों को मजा आ जाएगा. हैव अ लिसन इफ यू हैवन हर्ड. इट्स कॉल्ड मेरी चाय की टपरी पे.

जान लगा दी पूरी की पूरी सोनू निगम ने गाना गाते हुए. व्हाट एन अमेजिंग सॉन्ग, व्हाट एन अमेजिंग वॉइस. लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक. दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू बाय ओमार ख्वाजा. इफ यू आर इन एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट व्हिच इन्वॉल्व्स अ कार और ट्रक एक्सीडेंट और अ स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट, अटॉर्नी ओमार ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी स्ट्रेसफुल. यू नीड एन अटॉर्नी दैट विल मेक श्योर यू आर कॉम्पनसेटेड. यू डोंट पे अंटिल यू विन फॉर अ फ्री कंसल्टेशन. कॉल 469-300-5046 or visit attorneyomar.com. Next gana, Dil Dhadakne Do. Movie nahi, gaane ka naam Dil Dhadakne Do aur movie ka naam hai Zindagi Na Milegi Dobara. Ladies and gentlemen, keep him coming. 972-235-5555. Blockbuster gaane from the 90s, 2000s and even today.

सच एन अमेजिंग सॉन्ग. विनीत फ्रॉम एलन ने रेकमेंड किया यार, केके का गाना वो सुनना था जो इट्स सच अ पॉपुलर सॉन्ग एंड इट्स आई जेन्युइनली फील इट्स द एवरग्रीन सॉन्ग्स. आई मीन केके ने, केके के हर गाने आर एवरग्रीन, बट दिस इज वन ऑफ दोज वेरी स्पेशल सॉन्ग्स दैट इवन आई लाइक. सो विनीत ने रेकमेंड किया है ये गाना टू ऑल द लिसनर्स ऑफ फनेशिया एंड थैंक यू सो मच विनीत for calling us and letting us know that this is also your favorite song and it is my favorite song as well. Pyar Ke Pal by the legendary iconic KK. He's no more in this world, but I think he is in our hearts through his music, through his voice.

0: फ्रॉम वन रीसेंट रिलीज टू अनदर रीसेंट रिलीज, अभी माशुका करके एक गाना है जो बहुत वायरल हो गया है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे. इंस्टाग्राम और फेसबुक से याद आया, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं एंड लेट अस नो योर सॉन्ग्स देयर एज वेल, एंड वी डू सम अमेजिंग कॉन्वर्सेशंस विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फ्रॉम इमिग्रेशन टू हेल्थ टू लॉ टू AI टू करियर. हम सारे टॉपिक्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे हम डिस्कस करते हैं विद ऑल दीज अमेजिंग गेस्ट. सो मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड यूट्यूब. इट्स कॉल्ड प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREMJOSHI पॉडकास्ट. तो हाँ, तो मैं बात कर रहा था इंस्टाग्राम और फेसबुक पे वायरल जाने की. तो माशुका करके गाना बहुत वायरल हो गया है, तो हमें सेंथिल ने रेकमेंड किया ये गाना. Please play that song. So, abhi back to back sare recent requests, recent movies ke aa rahe hain. So, we are loving it, ladies and gentlemen.
1: प्यार में believe करती हूँ, बस प्यार में बनने में believe नहीं करती. जो जब तक है तब तक है.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Beta, 95% aaye?
4: Haan, mummy.
3: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
5: Mera?
3: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated?
5: वो
2: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी।
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
8: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
7: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
9: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
10: इन प्लेनो।
9: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो।
6: आजा मेरी।

0: वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. लास्ट सॉन्ग ऑफ द आवर हमको सफ़ी ने रेकमेंड किया है. तू किसी रेल सी गुजरती है, मसान से लिया गया ये गाना. हियर्स योर सॉन्ग सफ़ी, एंजॉय.
1: पॉलिटेक्निक में पढ़ते हैं
2: जी, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं.

0: on your airwaves.
1: Turn it up.
0: Brought to you by Club Fanasia.

0: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
2: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
1: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
2: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
1: सच में? सब संभालेंगे?
2: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
4: हाय, दिस इज सैफ अली खान, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।
2: Let the music take control and dance the night away with Club Phonasia.
3: I love it.
2: The ultimate celebration of music and rhythm.

0: तो रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून्ड टू फनेशिया।
2: Let the music take control and dance the night away with Club Phonasia.
3: I love it.
2: The ultimate celebration of music and rhythm.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
4: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

0: Club Phonasia.
1: I love it.
0: The ultimate celebration of music and rhythm.
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाई सुपर हिट

0: We need to show the world our power. अब हम डर के शांत नहीं बैठेंगे, करके शांत बैठेंगे.
1: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. पिक्चर अभी बाकी है.
2: और एंटरटेनमेंट भी. स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया.
3: फन एशिया.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

और जब तुम उसकी बारात में क्रैश लैंड हुई टल्ली हो गए। उस दिन कॉलेज वाले प्यार से फॉरएवर वाला प्यार हो गया तुमसे। बाय गॉड।

5.5 गर्लफ्रेंड्स के बाद ये रियलाइज किया कि ऊपर वाले ने एक ही तुम बनाया। पर तब तक तो मेरी यादों की नहीं, सबके सितारा बन चुके।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

जान लेके किस्मत ने बांटे हैं राहों में कांटे हैं।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
3: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाई सुपरहिट
4: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Fun Asia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Fun Asia Radio for spreading the word.

0: कमी।
1: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
2: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनी।

0: एक बात बताओ रुक्मिणी, मेरे इतने सारे फेलियर्स के बाद यू स्टिल लव मी?
1: ओ रेशम के धागे,

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉनस्टॉप बॉलीवुड, नॉनस्टॉप स्वैग।
1: काला जादू कर दिया तेरी आँख सोनी,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: दिन
1: बेटा 95% आए.
2: हाँ मम्मी.
1: गुड. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
3: मेरा?
1: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
3: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintechs.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी.
5: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

नेशन का फन स्टेशन फनेशिया रेडियो।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: बेटा 95% आए?
2: हाँ मम्मी।
1: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
3: मेरा?
1: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
3: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी।
5: हाय, दिस इज रणवीर शोरी एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन फन एशिया रेडियो।
6: हैप्पी पीपल ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: 나는 라기도
1: I love you.
2: 안 흔들어 보내야
0: 할 거라 짠짠.

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
3: आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस, एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, where every bite is a celebration.
4: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: playing the best tunes in all of Dallas. Fun Asia Radio, 104.9 FM.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
9: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
10: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम चिकन तंदूरी मलाई चिकन टिक्का पनीर टिक्का मोमो या सोया चाप अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स नॉट जस्ट दैट फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम Garland, where every bite is a celebration.
11: Mamu, देखो क्या हो गया?
12: ओ क्या हो गया?
11: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
12: ओए जर्मन का कमाल है।
11: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
12: ओए नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी 972-690-6623 कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा यार
13: जर्मन मोटर्स कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस

0: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
2: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
1: नहीं।
2: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
1: नहीं।
2: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
1: वो भी नहीं।
2: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
4: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
3: That magic removal ho, love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
4: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
3: Samasya ka pakka samadhan.
4: Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
5: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
6: Ladies and gentlemen, welcome to the show, and let's get started with this holiday week. Today, it is Monday, the 29th of June. Sabse pehle, tareef us upar wale ki, jisne duniya banaye, chaand sitare banaye, zameen aasmaan banaye, insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya. Usi upar wale ki tareef hai, jisne mujhko, aapko, aur ye saari kainat ko, इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
2: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
1: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
2: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
1: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
2: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
1: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
3: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
4: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
5: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
4: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
5: वेट, व्हाट?
6: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
7: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
6: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
0: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
6: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
0: कहाँ?
8: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
6: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब।
9: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
10: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
11: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
0: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

0: वर्षों से उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता, जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
1: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा, लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
2: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401, प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
3: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। फ्रिस्को में इतना प्यार मिलने के बाद पंचतारा इज नाउ ओपन एट अ न्यू लोकेशन इन एलन। वही स्वाद, वही जुनून और वही जबरदस्त मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस। फेमस गर्मा गर्म पराठे, रोज ताजी बनी मिठाइयाँ और फुल सर्विस बार वेटिंग जस्ट फॉर यू। एंजॉय फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस और पंजाबी बफे एवरी डे। कैटरिंग सर्विस इज ऑल्सो अवेलेबल टू मेक योर एवरी सेलिब्रेशन मेमोरेबल। पंचतारा नाउ इन फ्रिस्को एंड एलन। मेंशन अपना पंजाब एंड गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट विजिट।
5: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
6: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
5: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
6: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
2: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटिन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
7: अजी, सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
8: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
7: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
8: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
7: सच में? सब संभालेंगे?
8: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
9: Welcome to this hour of the program. If you don't know what's going on around the world, we'll get it to you in our world news at 8:30. But right now, I'm going to get you some stories from the annals of history that happened on today's date, which is the 29th of June. French mariner Jacques Cartier discovered Prince Edward Island off the coast of what is now Canada. During a performance of William Shakespeare's Henry VIII on this day in the year 1613, the Globe Theatre was destroyed within an hour after its thatch was accidentally set aflame by a cannon marking the King's entrance on stage. The Globe Theatre, where most of Shakespeare's plays debuted, burns down on today's date in 1613. Michael Madhusudan Dutt died on today's date in 1873 in Calcutta. An Indian poet and dramatist, the first great poet of modern Bengali literature. He was a dynamic, erratic personality and an original genius of a high order. The first Bengali playwright and pioneer the sonnet form in the language. His best-known work is the epic poem Meghnad Badh Kavya, The Slaying of Meghnad. Bernard Herrmann, composer known for his collaboration with Alfred Hitchcock in scores for Citizen Kane, Psycho and Taxi Driver that you're listening to right now, was born on today's date in 1911.

0: कभी मैं तुझे कुछ नंबर्स एसएमएस कर रहा हूँ, पता लगा है किनके हैं और उन्हें 24 घंटे मॉनिटर करवा।
1: अरे शिवम, यहाँ पर वैसे ही 100 काम है, ये नंबर्स ढूंढना इतना जरूरी है?
0: सवाल पूछे बिना तुझसे कोई काम होगा?
1: ओके, चल ठीक है, प्लीज।

0: Indian groceries, halal meat, fresh produce, bakery items, live pani puri, fresh ganne ka ras, and this upscale dining experience. Foodistan in Aubrey. Let's round off this hour of the program. I do have another very busy hour coming up for you. So stay with me right here on the airwaves of the Fun Asia Network. And we'll make sure that you are completely informed and entertained right here on all the five radio stations under the Fun Asia Network right at 9 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, walk in anytime, 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
4: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस, एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम Garland, where every bite is a celebration.
5: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
6: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
11: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
12: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
13: It's Lawson.
12: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
13: It's Lawson.
12: Daddy, what is the law?
14: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
15: बेटा, 95% आए?
16: हाँ मम्मी.
15: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
17: मेरा?
15: हाँ. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. सारे अकाउंट्स अपडेटेड?
17: वो
1: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक

0: Let's go ahead and get your requests and dedications for the rest of this hour of the program, and I'll take them at 972-235-5555, whatever you'd like to listen to. We'll bring it on air, whatever is on your mind. Let's play it for you and make sure that you have a great day.
1: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
2: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
1: मेंशन फन एशिया एंड गेट 50% ऑफ ऑन ट्रायआउट सेशन.
3: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन.
4: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे.
5: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
6: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
4: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
7: हेलो टेक्सास परिवार, क्या आपको पता है देर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम अंडर फेनी एंड फ्रेडी फॉर कंफर्मिंग लोन्स दैट हेल्प्स यू टू गेट बेटर रेट्स बाय ऑलमोस्ट हाफ अ पॉइंट टू 1%. सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 96641.
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
9: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
10: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
9: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
11: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
12: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
13: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
12: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
13: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
12: ये क्या होता?
13: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
14: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
6: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
15: मामू, देखो क्या हो गया.
16: ओ, क्या हो गया?
15: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया. और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
16: ओए, जर्मन का कमाल है.
15: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है.
16: ओ, नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन. मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार. तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623. कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार.
6: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस.
14: प्लानिंग अ ग्रेजुएशन पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन, फैमिली गैदरिंग और प्राइवेट इवेंट? मेक योर स्पेशल मोमेंट्स इवन मोर मेमोरेबल एट फन पिज्जा किचन कॉलोनी. रेंट प्राइवेट पार्टी स्पेस फॉर 3 hours एट जस्ट $200 विद कस्टमाइज्ड मेन्यू ऑप्शंस टू सूट योर प्रेफरेंसेस. सेलिब्रेट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्रिएट लास्टिंग memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
6: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
17: Kya aapko business khareedne ke liye loan chahiye?
18: Call the SBA Loan Experts.
17: Kya aap franchise shuru karna chahte hain?
18: Call the SBA Loan Experts.
17: Kya aapko apne business ke liye working capital ki zarurat hai?
18: Call the SBA Loan Experts.
17: Construction ho ya renovation, business khareedna ho ya refinance karana ho. For all your business financial needs at the best interest rate and lowest down payment, call the SBA Loan Experts at 817-786-3338. That's 817-786-3338.
19: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

0: I guess. We killed it.
1: आगे ले गया ट्रोल हो जाएंगे
2: या
1: नॉट एट ऑल
0: डीनू डाल दे ट्रोल हुए तो हो जाएगी.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury Brilliance Celebration, Tanmay Jewelers in Irving.
4: Pritesh, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
5: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
4: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
5: वेट, व्हाट?
6: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
7: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
6: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
8: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
9: Excuse me. It's called being loyal.
8: It's called being predictable.
9: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
8: And what's so special at Neon Cactus?
9: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
8: Not bad.
9: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
8: Okay, this I didn't expect from you.
9: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
10: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
11: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
10: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
11: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
12: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
13: Samajh nahi aa rahi, ticket loo to kahan se loo?
14: It's Lawson.
13: Kisse baat karun? Sari jankari kaun dega?
14: It's Lawson.
13: Daddy, what is the law?
15: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
12: Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
16: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with duck time.
17: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
18: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
17: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
18: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
17: सच में? सब संभालेंगे?
18: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनोल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
12: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: A warm welcome to all of you, and it is going to be very, very warm today. High in the 99s that we are going to see. And this is for all of you to know ki bhai Texas mein ho, Texas ki is garmi se aap bach nahi sakte ho. That's a fact. Now, given that, we'll give you the forecast in just a bit. Lekin, sabse pehle, kuch dua salam to kar le aap logon ke saath. Hello, namaskar. And thank you very, very much for tuning into Fun Asia Radio 104.9 FM. Ye hai gap शब गली विथ मी टू और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि भाई शबनम जी ने जो शो किया है हर मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपके लिए जो मॉर्निंग ड्राइव टाइम शो लेकर आती हैं इट इज सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड न्यूज दैट शी प्रेजेंट्स फॉर ऑल ऑफ अस तो इसके लिए तो बनता है दिल से एक शुक्रिया करना चाहती हूँ उनको और अब शुरू करें

एक नजर में भी प्यार होता है मैंने सुना है, और ये ना सारी सुनी सुनाई बातें हैं, ये लव एट फर्स्ट साइट ऑल ऑफ दैट इज एक्चुअली क्रश, राइट? ये प्यार तो तभी हो सकता है ना जब आप किसी इंसान को जानोगे. अब वो तो धीरे धीरे ही होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप इंसान को जानते हो वैसे वैसे आपका प्यार बढ़ता है. जैसे हमारे साथ भी ये जो रिलेशनशिप है आपका, है ना, ये धीरे धीरे बढ़ा है. ऐसे मतलब ऐसे इंस्टेंटली वन फाइन डे यू जस्ट हर्ड यू नो फनीशर रेडियो, ऐसे तो नहीं आप हेड ओवर हील्स तभी हो गए थे. धीरे धीरे ये जो रिश्ता बना है ना उसका मजा कुछ अलग ही है. This is Gupshup Gali with me too.

It's the music that we are head over heels for. So back-to-back songs for all of you right here on Funisha Radio 104.9 FM. ये है गपशप गली with me too. अगले segment में हमारे पास बहुत सारी जानकारी है आपके लिए. Then we have, of course, the conversational segments that we try to strike with all of you between 11 to 12. And then comes the FIFA segment for all of you. And that will be my last segment of the day, every day from Monday to Friday until 19th of July, ladies and gentlemen. Jab FIFA khatam hoga, hamara wo segment bhi khatam hoga and wo pura excitement bhi khatam hoga hamara. बड़ा एक ब्लैंक स्पेस सा हो जाएगा ना हमारी जिंदगी में, पता नहीं, मतलब स्पेशली बिकॉज डैलस में जो गेम्स चल रहे हैं उसके कारण डैलस की वाई भी कुछ अलग चल रही है.

0: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At ShopCompareInsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL, and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
1: Visit ShopCompareInsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's ShopCompareInsure.com, your 360 insurance solution.
2: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
3: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
4: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
5: Kya matlab?
6: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
6: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: Ab to karna hi padega, madam.
7: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
9: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
10: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833 गेट उमर और विजिट अटर्नी उमर डॉट कॉम।

0: is coming your way.
1: Vishal and Shekhar.
2: Here we go.
0: That's right. Vishal and Shekhar Live. Get ready for an electrifying evening filled with songs you've danced to, celebrated with, and fallen in love listening to. Sunday, July 12th at the Curtis Culville Center in Garland. Tickets on sale now. CashPatelProductions.com. The Super Hit Tour with Vishal and Shekhar.
3: Use code FUNASIA and get 30% discount.
4: Swag se karenge sabka swagat.
5: एंटरटेनमेंट का परमानेंट रास्ता आपका फनेशा की तरफ जाता है और अगर परमानेंट रेसिडेंसी अगर आपको चाहिए यूएस में तो वो रास्ता होता है लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता की तरफ एंड H-1B, F-1, L-1 होल्डर्स या अगर आपके पास कोई नॉन इमिग्रेंट वीज़ा और कोई नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है और आपको अगर चाहिए यूएस परमानेंट रेसिडेंसी तो एज आई सेड लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता इज़ द वे टू गो फॉर ऑल ऑफ यू. उनकी जो टीम है वो एक्सपीरियंस्ड है और स्पेशलाइज करती है एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ इंक्लूडिंग EB-5 इन्वेस्टर्स वीज़ाज फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज perm labor certification and US citizenship. So make sure that you get in touch with them for anything and everything that you want to know in these regards. EB-5 investor visa program ke liye details ke liye you can send them an email info@seemamehtalawfirm.com and they will most certainly help you. Fun Asia Radio 104.9 FM pe, this is Gupshup Gali with me too.

भाई अगर दिल्ली के चांदनी चौक की याद आ गई तो फिर दिल्ली की गर्मी भी आप अच्छी तरह से वाकिफ हो, जो बिल्कुल डैलस वाली फील होती है. तो इट इज गोइंग टू बी हॉट, सनी एंड विंडी टुडे एज वेल. वेदर डिटेल्स कमिंग अप फॉर यू नेक्स्ट राइट आफ्टर दिस नेक्स्ट ट्रैक. यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विद मी टू राइट हियर. आई विल बी विथ यू टिल 12:30. डू रिमेम्बर टू कॉल इन विथ योर रिक्वेस्ट एंड डेडिकेशंस.

0: All right, ladies and gentlemen, this is Gapshap Gali with Me Too or Fun Asia Radio. You're live on air, and I believe this is Hussain Panjwani. Sarji, is it you?
1: Yes, me.
0: Well, thank you so much. And yes, a very warm welcome to you on the airwaves of Fun Asia Radio 104.9 FM. It's great to talk to you. I know you were traveling, and I hope you had a good trip. और हम अभी तैयार हो रहे हैं कि हमारे जो ये डैलस ऑडियंस के लिए जो फेवरेट डेस्टिनेशन है फॉर गुड वाइब्स और ग्रेट कॉन्वर्सेशन, तो आपका यहाँ पे होना इट एब्सोल्युटली वाज एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस. सो थैंक यू फॉर फाइंडिंग टाइम मिस्टर पंजवानी. थोड़ा सा 6 मिनट्स का टाइम बिफोर वी हिट द ब्रेक, लेट्स डू इट.
1: यस मैम. सो बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स, लेट्स स्टार्ट विद द इंटरेस्ट रेट्स. द गुड न्यूज़ इज एटलीस्ट पहले लास्ट 8-10 दिन से हम देख रहे कि रेट्स थोड़े स्टेबलाइज हुए हैं. जो एकदम से बढ़ रहे थे एकदम से गिर रहे थे. मीन्स इट्स नॉट बैड न्यूज, नॉट गुड न्यूज, एटलीस्ट थोड़ा स्टेबलाइजेशन देख रहे थे, हम एक क्लाइंट्स को डायरेक्शन दे सकते. बट उसमें एक स्लाइट गुड न्यूज है कि जो हम हाई rates had peaked, now they're coming back down a little bit. So anything like, you know, I would rather take 0.25% 0.375 drop than 0.25%, you know, increase in the rate. So whatever we can get, we should take it right now and appreciate it. Dusri baat hai ki jo Dallas mein hum dekh rahe hai ki housing market abhi bhi it is definitely tilted towards buyers market. To abhi bhi agar aapke jo bhi clients hai jo ab sideline pe hai, I think they should make the move. The reason is there are deals out there, builders are giving great deals. Sellers are really very, very motivated.
0: Okay.
1: So I think it is 100% buyer's market. Aur teesri baat, sabse achhi baat hai ki agar aap qualify hote ho, to the grant which will be starting in few days, which will be available, not starting, which will be available in few days.
0: Right.
1: July 1st ko it will start, we'll start releasing the grant money.
0: Yeah.
1: So if you are in the market, agar aapko lagta hai aapki median income is below 80% of the median income of the county you're living in. So you should definitely try. You have to be a first-time home buyer. You have to be buying a primary residence. So if your income is in over 100, over 90,000, 100,000, more than likely you will not qualify unless you have 5 or 6 people living in that house. But if it is 50, 60,000, 75,000, family of four, you can still qualify for this grant. So do not miss this opportunity. Aur teesri baat, refinancing abhi bhi hum dekh rahe ke kafi log jinka rate is 6.75, 6.875, they are refinancing, trying to go with zero closing cost. And right, especially agar aapka loan amount 7-8 lakh dollar hai, agar aapka rate 0.5%, 0.625 rate girta hai, and you're not paying any closing cost. Now I want to be very clear, it is not, hum aisa nahi bol rahe ki not out of pocket closing cost. There is no closing cost, only you pay upfront appraisal fee. Baki you are not paying any title company fee, no lender fee, nothing. And you can still drop your rate by 0.5 to 0.625 depending on your credit score and loan amount. Aur jo hum flavor of the year dekh rahe last 6-8 mahine se, cash out refinancing. Bahut se log aajkal, I would say at least 30% of my application for refinancing is cash out. So ek jump hua hai definitely cash out application mein. Bahut se log iske liye de rahe cash out because they have high credit card debts.
0: Right.
1: And some of them are just getting ready to make certain investments or get deals for investment property. Commercial property mein hum dekh rahe ke kafi log paid off office condo hai, paid off छोटे छोटे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दे आर ट्राइंग, रेस्टोरेंट्स दे आर ट्राइंग टू गेट कैश आउट फ्रॉम देम एंड कीप रेडी फॉर एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आउट देयर. सो एट ड्रीम होम हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स डिफरेंट बोरोअर्स के लिए है. वी हैव अ ग्रेट प्रोग्राम फॉर इन्वेस्टर्स जहां बेसिकली यू डोंट नीड एनी टैक्स रिटर्न्स एज लॉन्ग एज यू हैव गुड क्रेडिट एंड रेडी टू पुट 20-25% डाउन. यू वांट टू बाय एनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, we don't need any tax returns. This is not for commercial but for residential side. We don't need any tax returns and you can still qualify based on the rental income of the property you're buying. So ye program investors mein aajkal kafi hai. In fact, we did a cash out for a borrower who had retired and he had paid off investment property. Mm. But unko paise ki zarurat thi. He went to his bank. They didn't do his loan because he didn't have any source of income other than social security income.
0: Right.
1: He called us and we were able to get him a cash out on the investment property. So think about it. Agar aap retired ho, aapka job chhut gaya hai, aur aapke paas equity hai, in an investment property, we can get you cash out on that investment property. And last but not the least, we have some great options for self-employed borrowers. Whether aapka khud ka business hai, you're on 1099 commission income, we can definitely get you a loan. Instead of tax returns, we just qualify you based on the bank statement loan. It's a great program where we qualify deposits ke basis pe qualify karte. So at Dream Home, we have a lot of different programs. VA loan for our veterans with 0% down. To all the veterans out there, thank you for your services. And this is a great program where you can go to 0% down. Pe ja sakte ho. FHA loan with 580 score, agar aap qualify hote ho, if you qualify, you can go with 3.5% down. So, hum puri koshish karte hai Dream Home ke clients ke liye, for Asia ke listeners ke liye, try to get different loans in all 50 states. We are doing loan in Florida, Michigan.
0: Pajwani sahab, we just have 6 seconds. I need to thank you for that very quick update on everything. Thank you very
2: much. Kahan gaya? Kahan rakha tha? Suno na. मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
3: अरे सारे तो सेम है.
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला.
3: ओ हाँ, ये तो अलग है.
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadu? Dhua dhua. Kyun sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? Kabhi padhai to kabhi naukri ki chinta. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
6: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
4: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
7: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स ऑफ गाइडेंस ऑन योर रिजल्ट्स में वेरी.
8: बेटा, 95% आए?
9: हाँ मम्मी.
8: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
10: मेरा?
8: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
10: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी.
11: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर.
12: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
13: इतना सब और प्राइस?
4: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
14: मैं.
15: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
16: हाँ.
15: घर रिलोकेट करनी है?
16: हाँ.
15: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
16: हाँ भाई हाँ.
15: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
17: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
18: I've been researching retirement planning.
19: Oh, really? Where?
18: Google, YouTube, a guy on TikTok.
19: Or you could just talk to WealthTactic.
18: What's the difference?
19: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
4: WealthTactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
12: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Isha Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
9: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।

And that was from Donkey, ladies and gentlemen, Rajkumar Hirani ki last outing, which was so much hyped. Itna significant is film ko promotion mila tha aur logon se kafi curiosity bhi thi film ke release hone ke pehle. But it didn't do as well, probably the team had thought. और इसका मेजर रीज़न राजकुमार हिरानी ने कहा कि शायद इंडिया के लोग कनेक्ट नहीं कर पाए विद द टॉपिक, लेकिन आज भी उनको यूएस और कनाडा से ये जो है इलीगल इमिग्रेशन के बारे में जो ये एक टॉपिक था उससे रिलेटेड काफ़ी लोग जो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया फर्स्ट हैंड या जिन्होंने यू नो कहानियाँ सुनी हैं इस बारे में, वो सारे उन्होंने अभी भी उन्हें कॉल करते हैं. एंड दैट्स राजकुमार हिरानी, लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड राजकुमार हिरानी जो कि उनका सक्सेस रेशियो अगर आप देखो तो इट इज एक्सट्रीमली गुड, वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, राइट. द फिल्म मेकर हैज एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ ब्रांड दैट्स बोथ व्हाट यू कैन से probably credible and inventive, which is obviously seen through so many of his blockbusters. Aap chahe wo Three Idiots ka naam socho ya Munna Bhai, MBBS, Lage Raho Munna Bhai, PK, to even Sanju. To Sanju pe hi chalte hain kyunki Sanju aaj hi ke din release hui thi, and that was Ranbir Kapoor's. Aur jis tarah se unhone transform kiya tha, ye credit sirf Rajkumar Hirani ko nahi jata, it goes also to Ranbir Kapoor. Oh, yeah.

0: समझे हैं। हाँ
1: And that is, ladies and gentlemen, from the film Sanju, jo aaj ke din release hui thi in the year 2023. And this segment is all about playing songs from films that released on this day. And that is 29th, ladies and gentlemen, 29th of June. Aur yehi ek film mili, to be honest, mujhe aur koi film nahi mili. Lekin mujhe jo mila, wo bhi apne aap mein kamal hai. And that is the link between this and the next track that I'm going to play for all of you. And it is just the fact ki Rajkumar Hirani se jab biopics ke bare mein pucha gaya, to he spoke about it very candidly and it felt so real. Kyunki kya hai na ki aap koi jab TV series bana rahe ho ya web series, to aap bahut aram se phail ke storytelling kar sakte ho. But when it is a movie, it has to be compressed. Aur kitne sare anecdotes jab aap biopic kisi ki banane ja rahe ho, to kitne sare anecdotes usme shamil ho sakte hai, lekin unme se kaun sa rakhna hai कि वो एक एक फ्लो बना रहे, एक स्पाइन जो है फिल्म का, स्टोरी का, वो एक कनेक्शन बना रहे, एक कनेक्टेड फील हो. उन सब चीज़ों को देखते हुए बायोपिक इज़ ए वेरी डिफरेंट मॉन्स्टर. ये एक फिल्म मेकर की फिर अपनी अपनी एक स्पेशल बात होती है, दैट दे ब्रिंग आउट द स्टोरी ब्यूटिफुली, कीपिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग. क्योंकि बायोपिक इस केस में मान लीजिए संजय दत्त की कहानी थी, राइट संजू, तो संजय दत्त के बारे में कौन नहीं जानता, एंड कौन उनकी स्टोरी के बारे में पूरी तरह से, राइट फ्रॉम हिज ड्रग स्टोरी टू हाउ ही गॉट इनटू द गन स्टोरी एंड ऑल ऑफ दैट, वो सारी चीज़ें हमें पता है. येट उसको इंटरेस्टिंग वे में कैसे आप पेश करो कि वो आपको एंगेजिंग भी रहे, एंटरटेनिंग भी रहे. सो विथ अ बायोपिक, एवरी टाइम यू हियर एन एनेक्डोट एंड थिंक दिस कैन बी इन द फिल्म, इट इज़ डेफिनेटली a maker's prerogative and they have to weave the story in a way ki wo ek flow rahe. Aur isiliye sabse mushkil baat hoti hai biopic banana. Most films are about achievers, right? Kyunki ye bhag milkha bhag ho ya Dhoni ki ho ya Gandhi ho, or the biopic on Lincoln, they end in triumph on a high note, right? Lekin Sanju jo ye kahani thi ye bilkul alag hone wali thi, Sanjay Dutt ki kahani thi, and it was a far more trickier film to write than Rajkumar Hirani imagined, kyunki uska kuch aisa high point nahi tha film ke at the climax, right? But it was a story about survival, it was a story of resilience that you see, and that was Sanju jo aaj ke din release hui thi. Ladies and gentlemen, that brings me to the point ki bhai highest grossing Bollywood biopic kaun si thi, pata hai aapko? Let's get you this next track and that will explain it all, ladies and gentlemen. The sports drama that was based on the real life story of Mahavir Singh Phogat and his daughters Geeta and Babita Phogat shattered the box office records, ladies and gentlemen.

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
5: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
4: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
5: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
6: माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय CPA Sudhir Pai, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट, हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट mytimeequity.com और कॉल Sudhir Pai एट 9723302771 और ईमेल wealth@mytimeequity.com टू हेल्प यू अचीव योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव टुडे। टॉक टू Sudhir Pai अबाउट 2025 डिजिटल asset or crypto fund.
7: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
8: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
11: हे मैप्स, टेक मी टू माय देसी ग्रोसरी स्टोर।
12: कैलकुलेटिंग राउट, रीराउटिंग।
11: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
12: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
11: क्यों?
12: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
11: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
13: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
12: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
14: हेलो गाइस, दिस इज मी किंजल दवे एंड यू आर लिसनिंग एंड वाचिंग फन एशिया रेडियो।
15: डालस की धड़कन 104.9 एफएम, फन एशिया रेडियो।
14: लिसन, यू आर ट्यून इन टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम, और ये और अगला सेगमेंट हमारा कुछ ना सिर्फ रिलेटेबल टॉपिक्स के बारे में होता है, कि ऐसी कुछ चीजें जो आपसे पूछना चाहूंगी, समथिंग दैट आई हैव कम अक्रॉस और यू हैव कम अक्रॉस। समटाइम्स देर आर लिसनर्स हु कॉन्ट्रीब्यूट टू द टॉपिक्स एंड आई मस्ट टेल यू ऑल कि हम कितने थैंकफुल रहते हैं जब इस तरह का कनेक्शन हमारे बीच बनता है ना। तो गपशप गली पे आपका स्वागत है, मेरा नाम है मीठू, आप लोगों के साथ 12:30 तक हूँ। सबसे पहले पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के बारे में बताना चाहती हूँ आप लोगों को, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी आर वेरी यू नो कीन टू टॉक अबाउट, स्पेशली बिकॉज वी नो कि हमारे जब हम जाते हैं हम अपने डॉक्टर्स के पास, तो कई बार वो जो फटाफट वाला अपॉइंटमेंट होता है ना, कि आप वेट करते हो एक घंटे के लिए एंड देन यू कैन सी द डॉक्टर ओनली फॉर 5 मिनट्स, ऐसा यहाँ नहीं होता। आपको वो पूरा टाइम दिया जाएगा जो आप को ज़रूरत है या आपकी ज़रूरत है, आपकी हेल्थ की ज़रूरत है। तो ज़रूर याद रखें टू मेक श्योर दैट योर फ्रेंड्स नो, योर फैमिली नो अबाउट इट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज द नेम एंड पैशन हेल्थ इज ग्रोइंग एंड दे आर नाउ हायरिंग एक्सपीरियंस्ड प्राइमरी केयर डॉक्टर्स, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस एंड साइकेट्रिस्ट एज वेल। फुल टाइम या पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज की अगर आप तलाश में हैं, मेक श्योर दैट यू सेंड देम एन ईमेल, यू सेंड योर रेज्यूमे टू पैशन हेल्थ

physicians@gmail.com या उन्हें टेक्स्ट करें 2174544639 पे. सिंपल है कि अगर आपको ये याद ना रहे तो आप हम तक पहुंच रहे हैं. वी विल बी वेरी ग्लैड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द लिसनर्स, passionhealthphysicians.com इज दैट वेबसाइट. 2146666259 इज द नंबर टू कॉल. थैंक यू वंस अगेन फॉर ट्यूनिंग इन. स्टूडियो का नंबर है 9722355555. हाल ही में एक रेस्टोरेंट में गई थी और एक ऐसी बात हुई दैट आई थॉट आई विल टॉक अबाउट इट एंड फाइंड आउट आप होते तो क्या करते.

And this is on Arijit Singh's YouTube channel that you will find, Orion Music by Arijit Singh. That's the channel name. And if you wish to find out more songs like such, aap zarur jaiyega, kyunki Arijit Singh wo hai jo hamare jaani pehchani aur bahut hi pasandida awaaz hai. Aur jab ye pasandida awaaz naye composers, naye lyricists ko mauka deti hai, to automatically unhe bhi wo traction milta hai. And that's the wonderful job he's doing on his YouTube channel. की बात करते हुए जाने पहचाने लोगों से जब आप कनेक्ट करते हो ना, तो उसकी बात अलग होती है, क्योंकि उन पर विश्वास होता है आपका. और जब वो विश्वास होता है तो फिर कनेक्ट करना आसान भी होता है. और इसीलिए यहाँ पे नवनीता खेमका का नाम लेना चाहती हूँ. शी इज़ विद केलर विलियम्स रियल्टी, लेडीज एंड जेंटलमैन. और नवनीता को हर कोई जानता है जो फनीशा सुनता है. तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आप नया घर खरीदने वाले हो या सेल करना चाहते हो, आप रिलोकेट करना चाहते हो इन द DFW एरिया, फॉर all these reasons, you can definitely get in touch with Navneeta Khemka today itself, ladies and gentlemen. Agar aaj aapki zarurat nahi ho, lekin aapko lagta hai aage ki bhi zarurat ho sakti hai ye aapki, to 347-449-4242 aapke phone pe save ho jana chahiye. Navneeta's number, ladies and gentlemen. Wo ek jo ek apna wo genuineness lekar aayegi, aati hain apne show par, aur wo is apne kaam mein bhi jo wo genuineness ek honest communication jo wo lekar aati hain, ye aapke liye waqai mein, it is that trust that you look for when you are making such a big purchase or such a big decision in your life, when you are relocating or let's say buying or selling your home. To ye ek aisi hi जाने पहचाने नाम की हमें जो तलाश होती है, दैट इज नवनीता खेमका. फॉर ऑल ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन द नंबर टू कॉल इज 347-449-4242. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू फनीशा रेडियो 104.9 FM. अब ये जानी पहचानी बात है, इट इज़ टू डू विथ रेस्टोरेंट. सो आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू, वट वुड यू डू अगर आप उस सिनारियो में हो. उस सिनारियो कुछ ऐसा है कि आप गए हो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, एंड यू आर वेटिंग फॉर द डिश दैट यू हैव ऑर्डर. और आपके सामने वो डिश आता है और आप वो पहला बाइट लेने जा रहे हो, एंड सडनली यू रियलाइज कि वो जो दाल मखनी है ना, उसमें थोड़ा सा वो जो दिखा है, दैट इज नॉट पैलेटेबल फॉर यू, एंड दैट्स द हेयर दैट यू जस्ट सॉ. तो आप क्या करते हो? वॉट वुड यू डू? आई वुड लाइक टू नो. 972-235-5555.

दिस इज गपशप गली विथ मी टू. और हमारी गपशप चल रही थी रेस्टोरेंट की कुछ एक ह्यूमन एरर को लेकर. बिल्कुल सही कहा नीति और चंद्र प्रकाश, आई थिंक दैट वॉज द नेम, एंड आशुतोष के साथ साथ प्रथमेश. ऑल फोर ऑफ देम एक्चुअली दे सेड द सेम थिंग, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ पीपल हु डू कंसिडर दैट एज अ ह्यूमन एरर. और ह्यूमन एरर को जज आप नहीं कर सकते हो. दिस इज अ वन ऑफ थिंग दैट हैपन्स. एंड अगर किसी भी रेस्टोरेंट में आप जा रहे हो और जब आप खाने लगे हो तो पता चला एक बाल निकलता है वहाँ से, तो येस द मोस्ट सिंपल थिंग वन कैन डू इज रियली कॉल द वेटर और अच्छे से, नॉट लाइक पुल द हेयर आउट एंड शोकेस इट टू एवरीबडी ऑन द टेबल, और मेक श्योर दैट कि भाई इस दुनिया भी जान जाए आसपास की, यानी कि पूरे रेस्टोरेंट के लोग जान जाए इतना शोर शराबा आप करो. ऐसा नहीं होता. यू हैव टू हैव दैट एटिकेट, यू नो दिस इज कॉल्ड रेस्टोरेंट एटिकेट. आई फील कि अगर गलती हुई है तो उसको धीरे दबी आवाज़ में, ताकि टेबल के आसपास वाले जो खा रहे हैं वो उनका भी एपेटाइट ख़राब ना हो, एक तो ये, और सेकेंडली यू डोंट वॉन्ट टू एम्बैरस द रेस्टोरेंट ओनर ऑल्सो, क्योंकि ये वाकई में एक ह्यूमन एरर है, एक गलती है, राइट. एंड मैंने हाल ही में, नॉट वेरी रिसेंटली एक्चुअली, आई हैव सीन पीपल यू नो रिएक्ट टू इट on another table, and I thought it was so bad. They were loud about it. They made sure that restaurant mein baithe sabhi logon ko is bare mein pata chale. To mujhe na ye mudda thoda sa uthana tha ki jab bhi agar aisa kuch incident hota hai, so what do you do? And pata hai aapko 99.99999% cases mein ye hota hai ki aap jinko waiter ko jab bolte ho to wo aapko ek replacement lekar aate hain aapke liye usi dish ka, and they apologize and all of that happens, right? So be nice, yaar. ये छोटी छोटी चीजें हैं ना जो बहुत जरूरी हैं.

0: अरिजीत सिंह, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे ना ऐसा क्यों लगता है कि जो सिंगर होते हैं वो इतने इमोशनल प्राणी होते हैं, एंड दे आर द पीपल हु सॉर्ट ऑफ इमोट द लिरिक्स ऑफ द लिरिसिस्ट एंड द इमेजिनेशन ऑफ द कंपोजर दैट दे ब्रिंग टू लाइफ मोस्ट लिटरली, राइट? और ऐसे में मुझे लगता है एक आर्टिस्ट का इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो बड़ा एक ना, जैसे कैसे क्या कह सकती हूँ, वट इज़ द वर्ड इन हिंदी, मट्ठर, आपने सुना है ये वर्ड मट्ठर? नाउ दैट आई से इट, वो कितना मतलब एक स्ट्रॉन्ग सा एक वर्ड लगता है, लेकिन येस मट्ठर इज़ द वर्ड. इफ़ यू डोंट नो नो इट, कि जो बड़े स्ट्रॉन्ग टाइप के ना, इमोशनल टाइप जो नहीं होते हैं बिल्कुल, जो बिल्कुल रॉक सॉलिड बोलना गलत होगा, एक्चुअली जो पत्थर दिल होते हैं वैसा कहना चाहिए मुझे, उनका मेरे ख्याल से अच्छा सिंगर बनना मुझे पर्सनली लगता है कि बड़ा मुश्किल है, बिकॉज देन यू कांट इमोट रियली, यू कांट फील अ फीलिंग. और इसीलिए हर आर्टिस्ट को देखोगे कि आप बड़े जज्बाती होते हैं, इंक्लूडिंग अरिजीत सिंह, एंड द सिंप्लिसिटी दैट ही ब्रिंग्स टू हिज लाइफ स्टाइल एंड द वे ही मिंगल्स विद पीपल, वो दिखता है यार, सीरियसली. मैं इतनी सारी अरिजीत सिंह की तारीफ क्यों कर रही हूँ, मुझे भी नहीं पता, आज बर्थडे है नहीं उनका, लेकिन हर दिन एक अरिजीत सिंह का नहीं बल्कि हजारों अरिजीत सिंह के गाने लगते हैं, तो उनके बारे में थोड़ी बातचीत अगर हो भी जाए तो कुछ गलत नहीं है, है ना? यू आर लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. आपके लिए है एक गिव अवे, और ये गिव अवे है फॉर सैन इडली रेस्टोरेंट. पता है मैंने ब्रेकफास्ट में अभी थोड़ी देर पहले इडली ही खाई है, एंड आई थॉट कि यार सैन इडली होता तो क्या मज़ा आता, सीरियसली गर्मा गर्म आपके पसंद का डोसा आपको मिलता तो क्या मज़ा आता है, और मतलब बेस्ट शहर के अगर फिल्टर कॉफ़ी मिलती तो क्या मज़ा आता, और ये मज़ा आपके नाम हो सकता है. टू ऑफ यू आर गोना विन दिस फ्रॉम सैन इडली रेस्टोरेंट, एक ऐसी जगह जहाँ पे आपके लिए बहुत सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये है 100% प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, मेड विथ ऑल द फ्रेश ऑथेंटिक स्पाइसेस दैट यू प्रॉबली क्रेव फॉर. और ये क्रिस्पी डोसाज हो या फ्लफी इडलीज हो या आपके जो मतलब जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ साउथ इंडियन क्विजीन दैट यू आर लुकिंग फॉर, आपको ज़रूर मिलेगा वहाँ पर. और बेस्ट फिल्टर कॉफ़ी के बारे में तो बता ही दिया है मैंने आपको, ज़रूर ट्राई कीजिएगा वो भी, और आपके केटरिंग के लिए भी, और आपके फैमिली के डिनर लंच एनीथिंग, जैन फ्रेंडली ऑप्शंस भी हैं. सैन इडली वेज रेस्टोरेंट, दिस इज एट हाईवे 121 एंड कस्टर जंक्शन. सो यस, टू ऑफ यू आर गोइंग टू विन. अगर आप मुझे अभी कॉल करके, नंबर वन एंड नंबर टू कॉलर को मैं उनको इनाम देने वाली हूँ, एंड यू हैव टू गेस द सॉन्ग. सिंपल, बहुत ही सीधा साधा सा. That's all that I'm going to play of this fantastic song, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा परिचय इस गाने को नहीं चाहिए. Now that given, give me a call at 972-235-5555. पहले कॉलर, you're live on air.
1: Hello.
0: Hi, what's your name?
1: Siddharth.
0: Siddharth. All right, Siddharth. थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आप समझ गए गाना. I will take it for absolutely Balma नहीं है वैसे वो मैं आपको गाना सुनवा दूंगी, लेकिन you are on the right track. So Siddharth, you are my first winner, and let's go to winner number two. You are live on air.
1: It's a wake up sir, Ikhtaro.
0: Absolutely sir, what's your name?
1: Mayank.
0: मयंक. तो सिद्धार्थ और मयंक होते हैं मेरे विनर्स फॉर सैन इडली रेस्टोरेंट. सो मयंक प्लीज होल्ड द लाइन, एंड सिद्धार्थ प्लीज कॉल मी बैक. ऑलराइट, एंड दिस इज लेडीज एंड जेंटलमैन सैन इडली रेस्टोरेंट, जहां पे आपका भी जाना मना नहीं है. आप बिल्कुल जाएं यार, पूरे परिवार के साथ जाएं और खाएं वहां का स्पेशल खाना. हम ये बहुत ही स्पेशल गाना लगाते हैं आप सभी के लिए.

0: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
1: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
0: That magic removal हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
1: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
2: ये तेरा घर ये मेरा घर
3: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
4: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
3: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
5: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
6: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम चिकन तंदूरी मलाई चिकन टिक्का पनीर टिक्का मोमो या सोया चाप अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स नॉट जस्ट दैट फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन
7: जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना
0: लाइफ हो या हेल्थ कब क्या हो जाए पता नहीं 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज a week 8 a.m. to 8 p.m. walk in anytime 9191 Kaiser Way suite 205 Frisco
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
8: क्या मतलब?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming. Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

लिसन, गुड म्यूजिक हमेशा ना एक अच्छा सा मूड बना देता है. एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग बिकॉज मैं यहाँ पे ये जो म्यूजिक लगाती रहती हूँ आप लोगों को, तो मुझे कहना चाहिए, ऐसा नहीं है. एक्चुअली गुड म्यूजिक प्लेज विथ योर मूड इन अ वे दैट कैन मेक एवरीथिंग सीम राइट. भले ही वो थोड़े से टाइम के लिए हो, लेकिन वो सच्ची में ऑल इज़ वेल विद द वर्ल्ड काइंड ऑफ फीलिंग लेकर आता है. एटलीस्ट फॉर मी माई सेल्फ आई कैन टेल यू, एंड दैट इज़ द रीज़न आई एब्सोल्यूटली लव माई जॉब. थैंक यू वंस अगेन फॉर ट्यूनिंग इन टू गपशप गली विथ मी टू. आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर म्यूजिक के शौकीन हैं तो विशाल शेखर का नाम कौन नहीं जानता, और जो जानते हैं उन्होंने अपने टिकट्स भी बुक कर लिए होंगे. और अगर आप उनमें से हैं जो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं और आप सोचते हैं कि यार खरीद लेंगे, पता है जुलाई 12 तभी वक्त है, उसमें काफ़ी वक्त है और हम निकाल लेंगे टाइम यार करने के लिए क्लोजर टू द डे, ना करें ऐसा, बिल्कुल भी ना करें. कर्टिस कलविल सेंटर जल्दी से भर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा. विशाल शेखर आज ज़बरदस्त परफॉर्मर्स ऑल्सो, मतलब वो ना सिर्फ अच्छे गाने कंपोज करते हैं लेकिन जब स्टेज शोज करते हैं तो आग लगा देते हैं सीरियसली. तो सीरियसली बिल्कुल भी लेट नहीं कीजिएगा. ओके, संडे जुलाई 12th, रिमेंबर दैट्स द डेट. एंड फॉर ऑल ऑफ यू, रिमेंबर दैट यू कैन गेट 30% डिस्काउंट इफ़ यू यूज़ दैट फनी शेयर कोड. लेडीज एंड जेंटलमैन, cashpatelproductions.com पे जाके आप अपने टिकट्स जल्द से जल्द खरीद लें. दैट्स द फ्रेंडलीस्ट ऑफ एडवाइसेस आई कैन गिव यू. मेरे टिकट्स तो हो गए हैं.

यू आर ट्यून इन टू गपशप गली विद मीठू. मेरे पास ना नियॉन कैक्टस की तरफ से आपके लिए है एक $20 का गिफ्ट कार्ड, डाइन इन गिफ्ट कार्ड. तो अगर आपको लगता है कि आप यहाँ जाना चाहते हो और वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो बिल्कुल तैयार रहें टू आंसर माई क्वेश्चन. ओके, बिकॉज द फर्स्ट कॉलर टू गिव मी द आंसर टू दिस इज गोइंग टू विन इट फ्रॉम नियॉन कैक्टस. तो स्टूडियो का नंबर बहुत ज़्यादा हैंडी रखें, 972-235-5555. That's the number in the studio. And Neon Cactus, वो जगह है जहाँ पर आपको Mexican fuse with that. What did I just say? Fuse? मंडे का इस असर है, क्या ही कहूँ मैं. मैक्सिकन फ्यूजन फूड. वेल, आजकल ऐसे कितने ही शॉर्ट फॉर्म्स, शॉर्टकट्स इन वर्ड चलता है, तो लेट्स कॉल इट फ्यूज, वाई नॉट मैक्सिकन फ्यूज along with global influence that you can get. मैं सोच रही थी केवल इन्फ्लू बोलूंगी, लेकिन वो फ्लू नहीं अच्छा लगा यार बीच में वो वर्ड, especially when I found out one of my friends who couldn't attend this gathering that we had, she had almost thought that she had flu, but strep throat है, which is good, better. What do you think? Strep throat flu से better है, क्योंकि flu में जो वो body के होता है ना, वो बहुत ही बुरा होता है, लेकिन स्ट्रेप थ्रोट जो होता है वो भी गले का जो वो. ओके, एनीवेज, वेयर आर वी गोइंग लेडीज एंड जेंटलमैन. ओके, लेट्स गेट बैक टू नियॉन कैक्टस इन फेयरव्यू ऑन स्टेसी रोड, एंड लेट्स टेक यू टू द रोड जहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कुछ ऐसी चीज़ जोड़ी है जो टूट गई थी और उसने आपने उसको वापस सही से उसको जोड़ा. बहुत सारी चीज़ें हैं यार, जब हम छोटे थे तो हमने बुक्स के लिए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं. मोची, यू नो द कॉबलर, वी हैव सीन देम डूइंग इट फॉर आर फुटवेयर ऑल्सो. और मुझे वो इतना इंटरेस्टिंग लगता था बैक इन इंडिया, जब वो मोची अपना जो किट खोल के वो बैठते थे और ये ग्लू निकाला, वो नेल ठोका, एंड वो जो चप्पल है आपकी वापस सही से हो जाती थी, यू नो. तो अगर आपने अपने आप से कुछ जोड़ तोड़ किया है, मतलब कोई टूटी हुई चीज को जोड़ा है, तो जरूर कॉल करें यार. आई वुड लाइक टू फाइंड आउट, बिकॉज आई केम अक्रॉस दिस वेरी ब्यूटिफुल पोएट्री कॉल्ड ब्रोकन बट ब्यूटिफुल बाई प्रिया मलिक. सो ये थॉट मेरे दिमाग में था कि यार मैंने कौन सी ऐसी चीज जोड़ी है जो वापस से इट इज फंक्शनल एंड इट इज नॉट द सेम बट स्टिल ब्यूटिफुल. मैं सोच रही थी तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों से पूछती हूँ. 972-235-5555, समथिंग दैट यू हैव अमेंडेड इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इट वर्केबल अगेन. ठीक है,

0: अच्छा, वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, द थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपने जोड़ी. एक्चुअली वही है कि हम ऐसे हेल्प तो लेते हैं, हम अपने मोची के पास भी गए हैं, हम ऐसे चीज़ें जो हैं जो हमने प्रोफेशनल से सही करवाई हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ अगर आपने खुद सही की हो तो मुझे ज़रूर बताएं. बिकॉज आई, एज आई टोल्ड यू, आई केम अक्रॉस दिस ब्यू दीज वेरी ब्यूटिफुल लाइन्स फ्रॉम प्रिया मलिक दैट आई लाइक टू कोट फॉर ऑल ऑफ यू हियर, कि आसमां में चमकते हुए सितारे तो हम रोज़ देखते हैं, आसमां में हम चमकते हुए सितारे तो रोज़ देखते हैं, लेकिन सिर्फ किसी टूटते हुए तारे को देख आंखें मूंद हम सपने सेकते हैं. कुछ चीज़ों की कीमत उनके टूटने के बाद बढ़ जाती है, जैसे कि दिल, जैसे कि रिश्ते, और उन रिश्तों में उलझे हुए लोगों के टूटे फूटे से दिल. सो इन जापान देर इज दिस आर्ट ऑफ किंसुकी वेयर ब्रोकन सेरामिक्स आर पुट बैक टुगेदर अगेन एंड देयर क्रैक्स आर फिल्ड विद गोल्ड सीमेंट टू रिमाइंड ऑल ऑफ अस दैट ब्रोकन कैन बी ब्यूटिफुल अगेन. चलिए मैं लेती हूँ ये कॉलर और इनसे जानती हूँ उन्होंने अगर कुछ अपना जोड़ा तोड़ा है, लेट्स से तोड़ा जोड़ा है, लेट्स गो दी अदर वे राउंड, है ना, और आप मुझे बताएं कि ऐसा कुछ किया है तो जरूर बताएं. यू लाइक वन?
1: जी, मैंने भी किया जी. देखिए, जब हम छोटे थे तो उस टाइम पे ना हीटर हुआ करते थे जिसमें वो स्प्रिंग से डले हुए होते थे, आपको शायद याद होगा, जो
0: राइट.
1: इलेक्ट्रिसिटी से चलते तो वो टाइम टाइम पे ना वो बर्न हो जाया करते थे. तो मुझे अभी बिल्कुल मेरे दिमाग में वो जैसे स्पार्क हुआ कि उसको हम लोग हमेशा जोड़ते रहते थे और वो चलता रहता
0: हाउ लवली इज दैट ना, कि मतलब एक तो वो चीज के साथ अटैचमेंट जो हमारी होती है उसके कारण भी हम जोड़ते
1: जी.
0: जोड़ते तोड़ते जोड़ते रहते हैं, लेट्स नॉट से तोड़ते रहते हैं, हम जोड़ते रहते हैं, और उसकी लॉन्जिटिविटी बढ़ती रहती है, और कितने सालों तक हम उनको चलाते रहते हैं, ये एक हमारा सिस्टम में.
1: वही मुझे याद है कि वो इतना लॉन्ग टर्म तक हम लोग खींचते रहते थे, उसको जोड़ते रहते थे, वो चलता रहता
0: हाउ लवली इज दैट, थैंक यू सो मच. व्हाट्स योर नेम?
1: जी, शबनम.
0: शबनम, ऑल राइट, दिस नेम इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स, क्योंकि शबनम जी शो शुरू करती हैं यहाँ पे फनीशा रेडियो पे. तो शबनम आपको
1: जी.
0: देना चाहेंगे हम नियॉन कैक्टस की तरफ से, नॉट बिकॉज यू हैव द सेम नेम, बट यू आर द फर्स्ट वन टू गिव मी द रेलिवेंट आंसर टू दिस क्वेश्चन. थैंक यू सो मच. प्लीज
1: थैंक यू.
0: प्लीज होल्ड द लाइन. हाँ, मैं आपको होल्ड पे रखने वाली हूँ और सारी डिटेल्स
1: ठीक
0: लेती हूँ
1: है.
0: आपके आपसे. एंड नियॉन कैक्टस, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट यू शुड रिमेंबर, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इट इज अ प्लेस दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय, नॉट जस्ट फॉर वाइब्स बट एक्सट्रीमली फॉर फूड, दैट यू गोइंग टू रीविजिट दैट प्लेस. ये है गपशप गली विथ मी टू, बातचीत करके वापस आती हूँ, ठीक है?

जुटने और जोड़ने की बात चल रही थी और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि दिलों की बात आ ही गई हमारे कुछ लिसनर्स से जिन्होंने ऐसे रिश्तों की और दिलों के टूटने की बात की. वो कभी भी एक जैसा नहीं होता है, जुड़ता ज़रूर है लेकिन एक जैसा नहीं होता है. और इसीलिए ये याद रखना ज़रूरी है कि किसी का भी अगर आप दिल तोड़ते हो तो जोड़ने में वक्त लग सकता है, और वो वक्त जो है वो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं होगा. वो जुड़ने का जो अपना जो टाइम लेंगे वो उन पर डिपेंड करता है. यू कांट फोर्स देम टू फील बेटर. इट विल टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ टाइम. और वो जो जुड़ेगा वो एक अलग तरीके से जुड़ेगा. इट माइट नॉट बी वॉट इट यूज टू बी. मतलब आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, शायद वो पहले जैसी नहीं हो, लेकिन अगर अगर आपकी एफर्ट पूरी पूरी हो ना, तो वो जो जुड़ के जो नया जो बनेगा वो रिश्ता बहुत ज़्यादा और स्ट्रांग होगा. दैट इज़ फॉर श्योर. लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. ब्रेक की तरफ जाने वाली हूँ और वापस आके वी हैव द फीफा सेगमेंट फॉर ऑल ऑफ यू राइट हियर ऑन गपशप गली विथ मी टू.

0: ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
1: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं।
0: तो फिर
1: अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
2: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
1: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
4: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
5: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
4: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
6: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
7: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
8: भूख लगी जोरों की भूख लगी
9: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
10: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
9: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एंबियंस and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to page 3, Hub 121 McKinney.
11: Hey, tumne kabhi insurance liya?
12: Liya.
11: Kabhi policy samajh bhi aaya?
12: Nahi aaya.
11: Mujhe bhi nahi aaya. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 9728633772। That's 9728633772.
4: Visit www.senadainc.com today.
13: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
4: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
14: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
16: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में? सब संभालेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
14: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

week based on our stars. Okay, let's see if we can get this going, ladies and gentlemen. If not, I am going to play it for you in a bit. Let's see. Anyways, गाना सुनते हैं, उसके बाद वापस आके बात करते हैं इसके बारे में. And I promise you, जो वादा किया है वो निभाना तो पड़ेगा ही. तो चलें, ये इस गाने पर चलती हूँ और उसके बाद हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं. Okay? Now that being said, let's get you this next track going right here. This is Gupshup Gali with me too.

0: After 17 days of group stage drama, अब हर match do or die बन चुका है, ये हम सब जानते हैं. This is the FIFA update segment for all of you. In the very first elimination game yesterday, tournament co-host Canada booked their historic spot in the round of 16, as we all know and as we all enjoyed it so thoroughly. Canada now awaits the winner of tonight's late blockbuster match between Morocco and the Netherlands in Monterrey. And उससे पहले आज दो और एक्साइटिंग नॉकआउट एनकाउंटर्स हमारे सामने होने वाले हैं. फाइव टाइम वर्ल्ड चैंपियंस ब्राजील और साथ में उन्होंने जो वो जो डेंजरस जापान की जो टीम है ना, ये ह्यूस्टन में उन्होंने बस अभी अभी खेलना शुरू किया है एज वी स्पीक. एंड ब्राजील के मैचेस पर तो पूरी दुनिया का जो है पूरी दुनिया की नज़र है, और जापान उन्हें एक बहुत ही फियर्स टक्कर देने वाले हैं. एंड दैट इज़ वॉट वी आर टू सी. इट इज़ द एलिमिनेशन अराउंड की, मतलब अगर आप हारे तो आप निकल गए यू नो राउंड ऑफ 16 से सीधे सीधे बाहर. एंड राइट आफ्टर दैट, राइट आफ्टर द ब्राजील जापान मैच विच इज ऑन गोइंग एज वी स्पीक, राइट आफ्टर दैट पावर हाउस जर्मनी विल टेक ऑन पैराग्वे इन बॉस्टन विथ ए राउंड ऑफ 16 स्पॉट ऑन द लाइन. सो दिस इज द क्विक अपडेट दैट आई वॉन्टेड टू गिव टू ऑल ऑफ यू अबाउट द मैचेस दैट आर टू हैपन टूडे. और इसी के साथ मेरी कोशिश फिर एक बार की मैं आपको वो गाने सुनाऊँ जो आपने बहुत दिनों से सुने नहीं है, या क्या पता कि सुने ही नहीं है एट ऑल. दिस इज कपशप गली विथ मी टू एंड मोर अपडेट्स एंड ट्रिविया कमिंग अप फॉर यू ऑल अबाउट फीफा इन दिस लास्ट सेगमेंट.
1: Bring it on. There we go.

And it is that Sayyara track from Ek Tha Tiger that we all enjoyed. कुछ ऐसे ही पसंदीदा गाने आपके हर रोज फनीशा रेडियो पे प्ले होते हैं. And the other gems of Bollywood and PMJ Jewels have the actual gems in terms of diamond and gold that I'm talking about. यहाँ पे हर आपके special दिन को थोड़ा और special बनाते हैं, थोड़ा और sparkling नहीं, बहुत सारा sparkle add करते हैं और एक जो memory बनाते हैं वो अपने आप में अलग ही चमचमाता हुआ. So do remember PMJ Jewels bringing over 60 years of jewelry excellence and timeless Indian craftsmanship at their showroom. Aur ye lekar aaye hain aapke liye Mahesh Babu aur Sitara Ghatta Maneni. PMJ is a name trusted by generations, ladies and gentlemen. To aane wale dino mein agar aapka koi plan hai to zarur check out karein this 45th location of PMJ Jewels that you can check out right here in Frisco. You are listening to Phanisha Radio 104.9 FM. तो जाते जाते ना FIFA के बारे में कुछ अपडेट मैं जो देना चाह रही थी उसके लिए मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त लगेगा और मैं देख रही हूँ कि घड़ी की तरफ कि वक्त ही तो नहीं है ज़्यादा मेरे पास. So how about going to straight into another beautiful song and I promise कि भाई FIFA segment के लिए जो updates और trivias हम लेकर आते रहते हैं आपके लिए that will be brought to you every day on my show between 12 to 12:30.

0: Shahid Kapoor, Kriti Sanon in that one, which you can check out in Cocktail 2 as well, alongside Rashmika Mandanna, that you will additionally get. Do watch Homi Adjania's film at your nearest theatres, distributed by Fun Asia Films. And jaate jaate, attorney Omar Khwaja ke baare mein batana chahti hoon, and the traffic update is brought to you by them. I-30 at Haskell Avenue, westbound, there is a collision and the right shoulder is closed, and there is a backup that you will get. So other than that, everything else looks to be somewhat smooth, and thanks to you all, I guess you all are driving really, really good and very careful on roads, and thank you for that. But koi collision mein agar aap pade ho aur aapko compensation chahiye, to attorneyomar.com ka naam zarur yaad rakhein. Free consultation ke liye 4693005046, and that's all the time I have with you all.
1: Heere moti main na chahu.
2: Achha, manifest karne se pehle thoda dobara soch lo, kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving, diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free, aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho, ya bas apni sparkle upgrade karni ho, ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
3: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
4: Is shahar ko hua kya? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
5: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
6: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
7: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
8: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
9: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
8: नहीं।
9: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
8: नहीं।
9: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
8: वो भी नहीं।
9: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
10: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
11: AG Fintax लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
12: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
13: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
12: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
13: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
14: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
15: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag aur upar se stress.
16: Arey relax. You need a cool therapy.
15: Therapy? Wo to bahut mehengi hai.
16: Nahi, cool matlab cool cha therapy.
15: Ye kya hota?
16: Simple. Chandigarh Bites Express in Allen.
17: Chandigarh Bites Express, serving some of the best Punjabi food in Dallas. From buttery curries to authentic Punjabi street food favorites, straight from Chef Gagan Pannu's kitchen. So next time life gets stressful, just take a dose of Kulcha Therapy at Chandigarh Bites Express.
18: And now at a bigger location, just 3 doors down, with limited reservation available.
19: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
19: Kya matlab?
5: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
19: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
20: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
19: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
21: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
22: DFW Hindu Temple cordially invites you and your family to a week of divine devotion and spiritual enlightenment through the sacred Srimad Bhagavat Katha from June 28th through July 4th, 2026. Experience the nectar of Bhagavatam as it is beautifully narrated by the world-renowned devotional singer and spiritual orator Acharya Shri Mridul Krishna Goswami Ji, Pramukh Seva Adhikari of Shri Bake Bihari Mandir, Vrindavan. Mahaprasad will be served daily for all devotees. For more information, visit DFW Hindu Temple.org. Jai Shri Krishna.

A very good afternoon, my desi people. आप सुन रहे हैं Fun Asia Radio 104.9 FM और मैं हूँ RJ Simi, aka RJ Desi Girl. लेके आई हूँ आपका favorite show, The Afternoon Adda. वैसे आप लोगों से आज बहुत सारी दिल की बातें करनी है, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा इमोशनल भी है, मोटिवेशनल भी है, और शायद आपकी जिंदगी के किसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है. कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन जब कुछ बुरा होता है तब इस बात पे यकीन करना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है. सच है कि नहीं? कभी एग्जाम मिस हुआ, जॉब नहीं मिली, किसी रिलेशनशिप का एंड हुआ, या कोई प्लान फेल हो गया, और बाद में हमें लगा कि शायद वही चीज हमें एक बेहतर रास्ते पे ले आई. आज हम बात करेंगे उन मोमेंट्स की जहां जिंदगी ने हमें कुछ सरप्राइजेस दिए, पर बाद में समझ आया कि हाँ, जो हुआ अच्छा हुआ, सही हुआ. वैसे व्हाट्स योर स्टोरी? कौन सी वो चीज है जो जब हुई थी तब बुरी लगी थी, लेकिन आज आप उसके लिए थैंकफुल हैं, शुक्रगुजार हैं? बताइए हमें बाय कॉलिंग अस एट 972-235-5555.

भाई मैं भी तो उन्हीं यादों के बारे में बात कर रही हूँ जो कि जब हुआ था तब बुरा लगा था, पर आज एक ब्लेसिंग सा लगता है कि हाँ, जो हुआ अच्छा हुआ। क्या आपको कभी ऐसा लगा है जब आपको कभी जॉब से रिजेक्शन मिला था और बाद में लगा कि अरे उससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, या फिर कभी किसी सिटी, स्कूल या रिलेशनशिप को छोड़ना पड़ा और आज लगता है कि वो डिसीजन जो है ना वो बिल्कुल सही था, या फिर US आने का डिसीजन को ही ले लीजिए, आपके लिए इनिशियली कितना डिफिकल्ट रहा होगा पर अब लाइफ जो है बेटर लगती है, लगता है कि हाँ ठीक है, हवा पानी वगैरह तो काफी अच्छा है यहाँ पे। हम सबके पास ऐसी एक कहानी होती है जिसे हम उस वक्त ट्रेजेडी समझ रहे होते हैं, लेकिन बाद में वही स्टोरी हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है, और उन्हीं स्टोरीज के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। व्हाट्स योर स्टोरी बाय द वे, कॉल कीजिए हमें और बताइए 972-235-5555 पे।

0: हाँ जी आ गई हूँ और आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सी स्टोरी लेके आई हूँ। आज हम बात कर रहे हैं उन चीजों के बारे में जो जब हुआ था तब बहुत बुरा लगा था कि यार क्यों हुआ मेरी लाइफ में, लेकिन आज हम उन चीजों के लिए काफी खुश हैं। उन्हीं में से एक हैं जल्पा। उन्होंने हमें फोन करके बताया कि वो जब 17 ईयर्स की थी तो वो इंडिया से US मूव हुई थी और वो गुजराती मीडियम से इंग्लिश मीडियम, वो भी विद द न्यू एक्सेंट ऑल टुगेदर। इमेजिन कितना डिफिकल्ट हुआ होगा उनके लिए, लेकिन आज वो बहुत खुश हैं और यू नो शी इज़ वेरी वेरी प्राउड ऑफ हरसेल्फ कि उन्होंने अच्छे से सेल किया और काफ़ी अच्छा कर रही हैं वो लाइफ में। और इसके अलावा एक और अमेजिंग चीज़ हुई भाई उनकी लाइफ में, उन्होंने उनका एक ब्रेकअप हुआ था, अपने पहला प्यार खोया है उन्होंने और उनको बहुत दुख हुआ कि क्यों हुआ, लेकिन बाद में उनके पेरेंट्स ने उनके लिए एक लड़का ढूंढा, उनकी अरेंज मैरिज हुई और वो दिल के डॉक्टर निकले, मतलब लिटरली, एंड उन्होंने जल्पा के सारे दिल के प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दिया। आफ्टर मीटिंग हिम उनकी लाइफ की सारी ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और उन्होंने सोचा कि यार सही हुआ, वो बंदा नहीं मिला, सही हुआ, बहुत सही हुआ, क्योंकि उससे इतना अमेजिंग अच्छा लड़का मिल गया, अच्छा पार्टनर मिल गया उनको लाइफ में। और तो और उन्होंने 25 इयर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं साथ में। इज़न्ट दिस अमेजिंग, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी। और मुझे लगता है कि हम सब ऐसी ही अच्छी चीज़ों का वेट कर रहे होते, तो जो आपके लिए सही हो ना वो सही वक्त पे ही आएगा। फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
4: ओ हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
7: Excuse me, it's called being loyal.
6: It's called being predictable.
7: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
6: And what's so special at Neon Cactus?
7: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
6: Not bad.
7: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
6: Okay, this I didn't expect from you.
7: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
8: Breaking news, home loan ya refinance.

0: ता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री, NMLS 2025289, लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सस। ऑल लोन सब्जेक्ट to credit approval. Equal housing lender.
1: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
2: Calculating route. Rerouting.
1: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
2: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
1: क्यों?
2: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
1: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
3: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
2: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
3: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
4: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
5: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
6: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
7: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
8: Tarikh par tarikh.
9: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
7: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
10: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।

आई थिंक इस गाने के जो लोचा इल्फत सॉन्ग है उसके कुछ लिरिक्स है ना, मंडे को डेडिकेट कर देना चाहिए. आई मीन, करने का दिल नहीं है फिर भी किए जाओ, और भी बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस है इस सॉन्ग में. आप सुन रहे हैं फनेशिया रेडियो 104.9 FM, और मैं हूँ आरजे सिमी, हु इज ब्रिंगिंग दिस शो आफ्टरनून अड्डा विथ यू. वैसे आज हम बात कर रहे हैं ऐसी स्टोरीज के बारे में, ऐसे कुछ मोमेंट्स के बारे में जो जब हुई थी तब बुरी लगी थी, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि जो हुआ अच्छा हुआ. वैसे एक चाइनीज कहावत है कि गुड लक बैड लक हु नोस. हम अक्सर तुरंत डिसाइड कर देते हैं कि ये जो हुआ ये अच्छा था और ये जो हुआ ये तो खराब है, ये तो बुरा है. लेकिन जिंदगी को, लाइफ को थोड़ा वक्त देना पड़ता है अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करने के लिए. तो फटाफट क्विक अफर्मेशंस कर लेते हैं कि मैं हर एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, सीख रही हूँ, और हर सेटबैक है ना एक सेटअप हो सकता है फॉर द गुड थिंग्स इन लाइफ. व्हाट डू यू से?

हाँ जी, इतना ही जुनून चाहिए फॉर द गिव अवे राउंड। हम लेके आ रहे हैं आपके लिए फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। तो तैयार हो जाइए, आपकी उंगली आपके फोन पे होनी चाहिए। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आपको जवाब देना है मुझे कॉल करके। रेडी, तैयार है? तो आज का जो सवाल है ना, वो एक छोटा सा क्यूट सा रिडल है कि वो क्या है जो आपकी सारी बातें सुनता है लेकिन जवाब नहीं देता, मतलब वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाता। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कॉल कीजिए @972-235-5555 पे।

नहीं नहीं जी, मैं तो बिल्कुल भी हल्के हल्के में नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि इकबाल जी ने जीत लिया है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। आज के गिव अवे राउंड के विनर है वो। क्वेश्चन ये था कि वो क्या है जो सब कुछ सुन सकता है लेकिन कुछ बोल नहीं सकता, और इसका एक्चुअल आंसर तो है कान, ईयर। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर्स आए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ लोगों ने बोला हस्बैंड। मैं अपनी वुमेन कम्युनिटी, अपनी कॉम के साथ बिल्कुल धोखा नहीं करूंगी, मैं उनके साथ खड़ी हूँ और मैं ये आंसर रिजेक्ट करती हूँ। वी आर आस्क्ड फॉर, मतलब ये आंसर तो हम नहीं ले सकते। वैसे कुछ लोगों ने बोला कि माइक भी हो सकता है, बट देन या मतलब आप बोल तो सकते हैं उस पे, वो शायद आपको सुन भी रहा है, बट वो इट्स नॉट आंसरिंग बैक लाइक अलेक्सा और समथिंग। और भी बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग आंसर्स आए, कुछ हमने मिस कर दिए, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट आपको फन पिज्जा किचन के बारे में बता देती हूँ कि यहाँ आपको वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन हर तरीके का जो है पिज्जा मिलता है। अगर आप वेजिटेरियन है तो यू शुड ट्राई अचारी पनीर पिज्जा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो तंदूरी चिकन पिज्जा इज प्योर स्मोकी परफेक्शन फॉर यू। और ना यहाँ पे हर टाइप का स्पाइस लेवल आपको मिल जाएगा, जैसा भी आपको कस्टमाइज करना है, माइल्ड चाहिए, बोल्ड चाहिए, सब कुछ मिलेगा, और हर एक स्लाइस आपका इंतजार कर रही है। अगर आपको इस पे डिटेल्स चाहिए रिगार्डिंग देयर ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स या फिर उनके मेन्यू के बारे में, तो आप जा सकते हैं एट देयर वेबसाइट विच इज funpizzakitchen.com।

भाई आखिर हीर सैड क्यों है? आपने उसको फनेशिया नहीं सुनाया क्या? उनको बोलो, सारे ही सैड हीरो को बोलो कि वो 104.9 एफएम पर ट्यून करे और अपना फेवरेट शो आफ्टरनून अड्डा एंजॉय करे विद मी, यानी कि आरजे सिमी। वैसे आप लोगों के लिए एक और खास न्यूज़ है कि अगर आप इसलिए सैड हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अपने नए घर के लिए क्या करना है, लोन कैसे लेना है, तो आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आई हूँ मैं। ड्रीम होम मॉर्गेज जो हैं आपके सपनों के घर को हकीकत में बदलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वो 1998 से फैमिलीज को हेल्प करते आ रहे हैं उनके होम ओनरशिप के सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए। वो देते हैं आपको पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशन और इनका जो प्रोसेस है ना काफ़ी स्मूथ है, स्ट्रेस फ्री है और इनके पास सारे ही 50 स्टेट्स ऑफ US इनमें लाइसेंस भी अवेलेबल है। इनकी टीम काफ़ी एक्सपीरियंस है जो आपको राइट लोन ऑप्शन सेलेक्ट करने में मदद करेगी जो कि आपके ज़रूरत के हिसाब से हो। अगर आपको भी नया घर लेना है, अपग्रेड करना है या फिर रीफिनेंस करना है तो आप इनको कॉल कर सकते हैं एट 972-245-5626 या फिर आप इनके वेबसाइट पे जाइए विच इज़ dreamhomemortgage.com जहाँ पे आपको और जानकारी भी मिलेगी।

हाँ बिल्कुल, आप भी चलिए, आगे बढ़िए। ड्राइव करके भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा संभल के, क्योंकि एक्सीडेंट होने का चांस है, स्लिप या फॉल इंसिडेंट भी हो सकता है। लेकिन आपके पास अटर्नी ओमर ख्वाजा हैं, जो आपको इन केसेस में मदद करेंगे। और तो और, वो तब तक आपसे चार्ज नहीं करते जब तक कि आप केस जीत नहीं जाते। आपको अच्छा लगेगा ना कि आपके इस पूरे स्ट्रेसफुल सोल्यूशन के लिए कोई तो मददगार है, जो सब कुछ पूरी लीगैलिटी से लेके डॉक्यूमेंटेशन से लेके इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग से डील करे। तो अगर आपको इनसे फ्री कंसल्टेशन चाहिए, तो यू कैन रीच आउट टू हिम एट 4693005046, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज attorneyomar.com। और अच्छे सॉन्ग्स के लिए तो आपको फनेशिया पे ही बने रह रहे हैं। ओके okay?

0: देखिए, घुंघरू टूट गए हो या फिर दिल टूट गया, उसके लिए तो शायद आपको कहीं और जाना पड़े। लेकिन अगर आप सुबह तक जोर से नाच रहे हैं और थक चुके हैं, तो आप हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज के लिए टेक्सास प्राइमरी केयर जरूर जा सकते हैं। वैसे अब इसको एक नया लोकेशन और एक नया नाम मिल चुका है, विच इज द लोनॉक्सी मेडिकल, और लोकेशन है फ्रिस्को। 13 ईयर्स से टेक्सास प्राइमरी केयर जो है प्राउडली अपनी कम्युनिटी के लिए केयर करते आ रहे हैं विद देयर सर्विसेज, और अब वो एक और नाम और एक लोकेशन पे भी आ चुके हैं। दिस इज फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, और लोनॉक्सी मेडिकल है ना, आपके लिए हर तरीके की सर्विसेज लेके आई है, चाहे वो प्राइमरी केयर हो, अर्जेंट केयर हो, इन हाउस लैब टेस्टिंग हो, एक्सरेज हो, या फिर सीटी स्कैन हो, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स हो, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज भी हैं। एवरीथिंग अंडर वन रूफ, तो भाई किस चीज का इंतजार है। अब जाइए लोनॉक्सी मेडिकल, विच इज ऑल्सो द टेक्सास प्राइमरी केयर। वैसे आप कभी भी वॉक इन भी कर सकते हैं, मतलब ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट ही लेके जाना है। और तो और, ये 7 डेज अ वीक ऑपरेट कर रहे हैं फ्रॉम 8 AM to 8 PM, मतलब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वैसे अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार है गिव अवे।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
8: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
7: कैसे?
8: पेज 3 ईटरी?
7: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
8: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
7: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
9: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
10: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
11: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
10: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
11: वेट, व्हाट?
12: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
13: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
12: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
14: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
15: Food not included at the

हाँ जी, आपका घाटा तो बिल्कुल नहीं है, घाटा तो उन लोगों का है जिन्होंने फाइनेंशिया पे ट्यून इन नहीं कर रखा है, 104.9 एफएम नहीं सुन रहे, मुझे नहीं सुन रहे, आरजे सिम्मी को, और ये शो नहीं सुन रहे, विच इज द आफ्टरनून अड्डा। आई मीन, अब आप पूछेंगे कि भाई क्यों क्यों, क्या घाटा हो गया उन्होंने अगर नहीं सुना तो? एक तो वो अच्छे अच्छे गाने मिस कर रहे हैं, दूसरा वो चंडीगढ़ बाइट का गिव अवे मिस करने वाले हैं। जी हाँ, वक्त आ गया है हमारे गिव अवे राउंड का, जहां आपको मिलता है चांस फ्री कड़ाही पनीर या फिर कड़ाही चिकन खाने का, वो भी फ्रॉम द चंडीगढ़ बाइट्स, जो कि एलन में है। और ये ना मंडे टू फ्राइडे एक स्पेशल थाली भी अरेंज कराते हैं, विच हैज़ द एक्साइटिंग न्यू डिशेज, जो ना रोटेट होता रहता है लंच पे। और वैसे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस गिव अवे राउंड में तभी पार्टिसिपेट करें अगर आपने फन एशिया से ये गिव अवे लास्ट वन मंथ में कहीं और किसी और शो पे नहीं जीता है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि हमें सबको मौका देना चाहिए। ठीक है, सवाल शुरू करें। वैसे सवाल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको मैं एक सॉन्ग प्ले करूंगी अभी, और आपको बताना है कि इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है। एक हिंट दे देती हूँ कि ये जो सॉन्ग है ना, उसके एक नहीं दो कंपोजर हैं। जी हाँ, एक इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर डुओ है इस सवाल का जवाब। और अगर आपको जवाब पता है तो आपको तो कॉल करना होगा मुझे 972-235-5555 पे, और मुझे जवाब बताना होगा। ठीक है, ऑल सेट, रेडी, गो।

आई एम स्टिल गेटिंग द कॉल्स फॉर आंसर फॉर दिस गिव अवे, जहां पे हमने छम्मक छल्लो प्ले किया था और आपसे पूछा था कि बताओ बताओ इसका म्यूजिक कंपोजर कौन है, और हिंट भी दिया था भाई एक नहीं दो हैं, और सब ने सही जवाब दिया है, और सबसे पहले आस्था ने सही जवाब दिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आस्था, आपको मिलता है चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से फ्री कढ़ाई पनीर या फिर कढ़ाई चिकन, आपको जो भी पसंद हो। बहुत सारे ऐसे सॉन्ग हैं विशाल शेखर के जो काफ़ी पॉपुलर हैं, और हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि सारे बॉलीवुड फैंस तैयार हो जाइए, विशाल एंड शेखर की सारी प्लेलिस्ट रेडी कर लीजिए, क्योंकि वो यहाँ पे आने वाले हैं जुलाई 12th को एट कर्टिस कलवेल सेंटर एट गार्लैंड, और टिकट सेल पे हैं, kashpatelproductions.com पे मिल जाएंगे। और अगर आपने फन एशिया का कोड यूज़ किया, मतलब फन एशिया जो नाम है वही कोड है, तो फिर आपको मिलेगा 30% डिस्काउंट। Isn't it interesting? Go for it, guys!

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से।
1: वैसे अब हमारा शो जो है ना, अब एकदम चरम सीमा पे है, बस खत्म ही होने वाला है, लेकिन शो बहुत मज़ेदार रहा। आई होप आई यू गाइज लाइक डेट। मुझे बहुत सारे कॉल्स आए एंड आई गॉट वेरी वेरी पॉजिटिव फीडबैक, सो आई रियली लाइक इट जब आप लोग मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि यू नो मज़ा आया, अच्छा लग रहा है, दिन अच्छा जा रहा है, मेरे चेहरे पे स्माइल आई। और ये था आफ्टरनून अड्डा, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि दिस शो इज़ ब्रॉट टू यू बाई AG फिनटैक्स, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म है US में। ये आपको इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विस ऑफर करते हैं, और बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल होते हैं ना जिनको आप टैप नहीं कर पाते बिकॉज देर इज नो वन टू गाइड यू और टू हेल्प यू। AG फिनटैक्स इज डेफिनेटली द राइट चॉइस फॉर यू इन दैट केस। ये इंडिविजुअल्स को भी हेल्प करते हैं और बिजनेसेस को भी हेल्प करते हैं, काफी ट्रस्टेड हैं, इफिशियंट हैं, और आपको फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए तैयार करते हैं। आप इनको कॉल कर सकते हैं 4699429888। आई रिपीट द नंबर फॉर यू, इट्स 4699429888, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज agfintechs.com।

दोस्तों इसी के साथ आज के शो का वक्त यहीं खत्म होता है। मैं हूँ आरजे सिमी एके आरजे देसी गर्ल, शो द आफ्टरनून अड्डा, आपसे इजाजत लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए कि हर नया दिन एक नई कहानी लेके आता है। मिलते हैं फिर इसी प्यार मस्ती और ढेर सारी बातों के साथ कल 12:30 से 2:30 बजे तक। तब तक के लिए गुड डे, गुड नाइट और कीप स्प्रेडिंग लव गाइज, पॉजिटिविटी, सब कुछ अच्छा अच्छा ही होना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर। और ये लास्ट गाना मैं आप लोगों को डेडिकेट करती हूँ क्योंकि आप ही तो हैं मेरे, या

0: ले जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़ावे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
2: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
3: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
2: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
3: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
2: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
3: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
2: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
1: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
4: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd to 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस, एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम Garland, where every bite is a celebration.
6: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
7: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
8: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Oora can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
10: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: Ab to karna hi padega, madam.
11: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या किसी ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर देर इज़ अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो ऐसी सिचुएशन कैन बी एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. पेपर वर्क, लीगैलिटीज, इंश्योरेंस कंपनीज, द निटिग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन और आपकी अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए आपको एक ऐसे अटर्नी की ज़रूरत है जो आपके लिए इन तमाम चीज़ों को हैंडल करें, एंड दैट अटर्नी इज अटर्नी उमर ख्वाजा. ना सिर्फ ये कि दे विल हेल्प यू fight your case, they will also help you get the best compensation jo aap deserve karte hain, aur jo sabse best baat hai wo ye hai ki you don't have to pay anything until you win the case. So win-win situation aapke liye is stress ki situation mein ho sakti hai. You need that support, or if someone you love or care for needs that support, here is attorney Umar Khwaja's number. His number is 469-300-5046. 469-300-5046 unka number, ya phir aap unki website visit kar sakte hain, which is attorney Umar, OMAR, attorneyumar.com. ye gana jo aap sun rahe the, ye फिल्म सिंघम से लिया गया. सिंघम वन जो कि मेरी फेवरेट सिंघम ट्रिलोजी की मूवी है, जो कि बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रोसिंग एक्शन फ्रेंचाइज मूवीज हैं ऑफ कोर्स, और 2011 में ये सिंघम वन बनी थी और एक कमर्शियल आप कह लीजिए ना, इंस्टेंट कमर्शियल स्मैश हिट थी. मेड ऑन द बजट ऑफ रफली 20 करोड़ पे सुना है कि ये पहली फिल्म बनी थी, लेकिन 140 से ज़्यादा करोड़ सिंघम वन ने कमाए और दाखिल हो गई 100 करोड़ के क्लब में. वो दौर था नया नया जब 100 करोड़ के क्लबों में फिल्में दाखिल हो रही थी, और अब तो खैर आए दिन की ही बात सी हो गई है. लेकिन बहरहाल वन ऑफ माई फेवरेट्स इन सिंघम ट्रिलोजी इज सिंघम वन. अब अगला गाना आपके लिए प्ले कर रहे हैं. फरमाइश आपकी चल रही है, आपके मनपसंद गाने आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे. 972-235-5555 इज हाउ यू कैन रिक्वेस्ट.

के की आवाज में वो लम्हे से सुन रहे थे आप ये गाना. और नेक्स्ट सॉन्ग इज गोइंग आउट टू सलीमा. सलीमा, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. दिस वन इज गोइंग आउट टू यू.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji. 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
3: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
4: Calculating route, rerouting.
3: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
4: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
3: क्यों?
4: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
3: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
5: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
4: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
6: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
7: इट्स लॉसन.
6: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
7: इट्स लॉसन.
6: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
8: इट्स लॉसन ट्रेवल्स फॉर ऑल योर ट्रेवल नीड्स. गिव देम अ कॉल टुडे. 214-631-2458. द ट्रेवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रेवल.
9: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद में कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
10: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
9: कहाँ?
11: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
10: फूडिस्तान इन ऑबरी. एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब.
12: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है.
13: प्लान या होप?
12: मतलब?
13: मतलब है प्लान, मतलब स्ट्रेटजी. होप मतलब देखते हैं क्या होता है.
12: ओके, तो मेरा वाला होप है.
13: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं.
12: क्यों?
13: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं, स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है.
14: वेल्थ टैक्टिक, रिटायरमेंट प्लानिंग विद क्लैरिटी एंड स्ट्रेटजी. फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 4696932077 और विजिट देम एट thewealthtactic.com.
15: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
16: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
17: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
16: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
18: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिप

0: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
1: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
2: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
3: इन प्लेनो।
2: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
4: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
5: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
6: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
7: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
6: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
7: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
6: सच में सब संभालेंगे?
7: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
8: डालस की धड़कन 104.9 FM, FunAsia रेडियो।

104.9 FM फनीजर रेडियो सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी दिस आफ्टरनून. मणि रत्नम की डायरेक्टेड फिल्म दिल से सुन रहे थे आप ये गाना, रोमांटिक थ्रिलर जिसने एक्सप्लोर किया द सेवन शेड्स ऑफ लव. जी हाँ, कहते हैं कि सारे शेड्स ऑफ लव जो हैं शाहरुख खान उनसे गुजरे इस फिल्म के दौरान, विच एंडेड अप इन Of course, a disaster. Anyways, जी ये था दिल से की एक कहानी का एक और पहलू जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी. और अब अगला गाना आपके लिए प्ले कर रहे हैं, लेकिन उससे आपकी पसंद चल रही है 9722355555 पे. Mondays are completely dedicated to you. पसंद आपकी, आपके मन पसंद रेडियो स्टेशन पे चलती है आपकी मन पसंद आरजे के साथ. अगर आप मानते हैं तो कॉल कीजिए और अपनी पसंद का गाना रिक्वेस्ट कीजिए. 90s onwards is the request that I am taking. और अगर आज आपका खाना पकाने का दिल नहीं कर रहा, यू नो, या कोई मेहमान आ रहा है, घर का खाना परोसना है लेकिन पकाए कौन, बिल्कुल हिम्मत नहीं. मेरे साथ कई दफ़ा होता है आज दिल नहीं है कुकिंग का पर घर का खाना खाना है, तो फिर मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ. तंदूरी फ्लेम गार्लैंड में लोकेटेड है. ज़रूर जाइए, आपके तमाम नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स जैसे कि तंदूरी प्लाटर्स हुए, करीज हुई, हॉट फ्रेश नान, मतलब तमाम फेवरेट्स आपके तंदूरी फ्लेम पे मौजूद हैं. और द बेस्ट पार्ट, बिल्कुल घर जैसे जायके के साथ. सो तंदूरी फ्लेम लोकेटेड इन गार्लैंड, डू विजिट एंड चेक दम आउट.

बर्फी फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना, एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसे अनुराग बासु ने डायरेक्ट किया था। रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा और इलियाना डिक्रूज हमें इसमें बड़े इम्पॉर्टेंट और कमाल के रोल्स में नजर आए। बहुत अप्रिशिएट किया स्पेशली रणबीर और प्रियंका को फॉर देयर रिस्पेक्टिव रोल्स। अच्छा जी, अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक गिव अवे, और गिव अवे आया है इंडिया बाजार जो कि फोर्ट वर्थ में लोकेटेड है उनकी तरफ से। सबसे पहले तो ये कि तमाम आपकी जो डेली देसी ग्रोसरी असेंशल्स हैं वो सब आपको इंडिया बाजार से मिल जाते हैं, जैसे कि ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस, स्पाइसेस, स्नैक्स, एनीथिंग जो आपके किचन में देसी जरूरत है, इंडिया बाजार इज द प्लेस टू गो। एंड इफ यू आर लोकेटेड इन फोर्ट वर्थ या फिर केलर या हर्स्ट या हैसलेट, तो फिर फोर्ट वर्थ की ये लोकेशन लोकेटेड एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ इज आइडियल फॉर यू। अगर आप ये स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर जीतना चाहते हैं तो आपको मुझे कॉल करना है और मुझे बताना है कि अब जो ये गाना आप सुनेंगे ये कौन सी मूवी से लिया गया है। बहुत सिंपल, मूवी का नाम बताइए और स्टार्स का नाम बताइए, ये दोनों चीजें मुझे बता दीजिए और जीत लीजिए इंडिया बाजार लोकेटेड इन फोर्ट वर्थ की तरफ से ये गिव अवे। अगर आप जीत गए तो आपको फोर्ट वर्थ जाके अपना ग्रोसरी हैम्पर लेना होगा, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड व्हेन यू आर कॉलिंग इन टू विन दिस हैम्पर। और अगर आप पिछले एक महीने में ये हैम्पर हमारे से जीत चुके हैं एट एनी अदर शो एट फनेजिया, तो प्लीज वेट फॉर वन मंथ बिकॉज यू कैन ओनली बी अ विनर वंस। अब जो गाना आप सुनेंगे मुझे आपने बताना है कि कौन सी फिल्म से लिया गया है और इस गाने को जो परफॉर्म कर रही हैं, जो स्टार हैं इस गाने की, वो कौन है। 9722355555

ऑल राइट, कनिका कपूर की आवाज और दीपिका पाडुकोन पे पिक्चराइज्ड ये गाना आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी हैप्पी न्यू ईयर. और यही आपसे सवाल था कि मूवी का नाम बता दीजिए और एक्ट्रेस का नाम बताइए जिस पे ये गाना पिक्चराइज्ड हुआ है. एंड ऑफ कोर्स बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, हैप्पी न्यू ईयर एंड दीपिका पाडुकोन, कनिका की आवाज. और हमारी जो आज की लकी विनर है वो है आमना महमूद. आमना, कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये ग्रोसरी हैम्पर दैट इज ब्रॉट टू यू बाय इंडिया बाजार लोकेटेड इन फोर्ट वर्थ 5152 क्वाड्रेंट वे. हमें दो दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर इंडिया बाजार पहुंचाने के लिए, एंड देन यू विल हैव अबाउट 6 to 7 डेज टू गो टू इंडिया बाजार एंड अवेल योर गिव अवे. वंस अगेन, गिव अस 2 डेज टू हैव योर नेम एंड नंबर गिवन देयर. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच. फनेजिया इस तरह के बहुत सारे giveaways आपके लिए लेकर आता है. All you have to do is stay tuned and stay connected.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
2: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
3: Mention FunAsia and get 50% off on tryout session.
4: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, firm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
5: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
6: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
5: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
6: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
5: ये क्या होता?
6: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
7: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
8: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
9: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
10: बाइंग और सेलिंग अ होम इजंट जस्ट अ ट्रांजैक्शन, इट्स वन ऑफ लाइफ्स बिगेस्ट डिसीजंस एंड इट डिजर्व्स द राइट गाइडेंस।
11: आई एम नवनीता, योर ट्रस्टेड रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी।
10: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
12: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
13: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
14: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
15: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
16: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिजल्ट्स में वेरी।
17: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
18: हाँ।
17: घर रिलोकेट करनी है?
18: हाँ।
17: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
18: हाँ भाई हाँ।
17: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
19: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
9: बेटा, 95% आए?
2: हाँ मम्मी।
9: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
4: मेरा?
9: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
4: वो
1: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी।
5: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम। Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
18: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

Once upon a time in Mumbai again से सुन रहे थे आप ये गाना जावेद बशीर की खूबसूरत आवाज में. Beautiful, beautiful, मतलब गाना कवाली टाइप चीज एक जो है ये बहुत ही खूबसूरत और one of my favorites है जी, जो आपके लिए भी प्ले कर रही थी. कुछ आपकी पसंद के गाने और कुछ अपनी, ये चल रहा है फिल्मी फरमाइश, पसंद आपकी, आपकी मनपसंद रेडियो स्टेशन पे आपकी मनपसंद आरजे के साथ. 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. मैं हूं किरण, ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण, आफ्टरनून ड्राइव टाइम एक्चुअली 2:30 PM टिल 5 PM हर रोज मंडे टू फ्राइडे मैं रहती हूँ आपके साथ, आप भी मेरे साथ रहते हैं. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग. और अब लेकर आई हूँ आपके लिए गिव अवे. दिस इज कॉन्वर्सेशन कॉर्नर ब्रॉट टू यू बाय रेड हॉट चिली पेपर विद द सुनहरी किरण. आप जीत सकते हैं चार डिशेज में से कोई एक, आइदर चिली चिकन या फिर चिली बेबी कॉर्न या फिर बटर चिकन या फिर चिकन मक्खन वाला, इन चारों में से कोई एक डिश आप खा सकते हैं. रेड हॉट चिली पेपर मिकिनी रिचर्डसन या एलन की ब्रांच पे जाके. If you are the winner, please make sure that the Frisco branch is not participating in this giveaway. So, ye teen Richardson, McKinney ya Allen mein se kisi ek branch pe aap jaake apna ye giveaway avail kar sakte hain. If you are the winner, and conversation corner mein aaj aapke saath jo discussion hai ji, abhi aaj hi ek teaser release hua hai Awarapan 2 ka. Ye teaser Imran Hashmi jo hai wo romantic crime drama hai Awarapan ka release hua hai, jo ke makers ne Monday ko yani ki aaj release ki. 2007 की ओरिजिनल फिल्म आवारा पन वन का ये सीक्वल बनाया गया है. और आवारापन वन जो है वो मोहित सूरी ने डायरेक्ट की थी, जबकि आवारापन टू जो अब रिलीज होने वाली है वो डायरेक्ट की है नितिन कक्कड़ ने. तो काफ़ी सारी एक्साइटमेंट है आवारापन को लेकर. आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी फिल्म है जिसका आप जो है वो रीमेक नहीं कहूँगी मैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ रीमेक ऑफ आवारापन वन, दिस इज़ अ सीक्वल और अ कंटिन्यूएशन ऑफ द स्टोरी ऑफ आवारापन वन. तो आप ऐसी कौन सी फिल्म है जिसका आप कंटिन्यूएशन देखना चाहते हैं, सीक्वल देखना जाते हैं, आपको इतना मजा आया कि आप कहते हैं यार अभी इसकी कहानी मजीद एक मूवी तक एक्सटेंड की जा सकती है. अगर आपके जहन में कोई ऐसी फिल्म आ रही है तो कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण में कॉल कीजिए 9722355555 और मुझे बताइए ऐसी कौन सी फिल्म है जिसका सीक्वल बनता हुआ आप देखना चाहते हैं. नॉट, दिस इज नॉट अ रीमेक क्वेश्चन, दिस इज अ सीक्वल क्वेश्चन. नई कहानी, नया ट्विस्ट, नए प्लॉट, लेकिन यू नो द स्टोरी, द बेस ऑफ द स्टोरी रिमेन्स द सेम. कॉल कीजिए और मुझे बताइए और जीत लीजिए ये चांस ऑफ रेड हॉट चिली पेपर.

thank you so much for your participation in the Conversation Corner with Sunehri Kiran. Red Hot Chili Pepper का ये giveaway आपके लिए आया था. और आज के जो हमारे lucky winner हैं वो हैं Maz. Maz, congratulations. आप मुझे phone call कीजिए please, ताकि मैं आपका नाम और number ले सकूँ to send to Red Hot Chili Pepper. Once again, to all of you who participated, thank you so much.

आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माज़'स कॉल. माज़, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज मुझे कॉल कीजिए ताकि मैं आपका नंबर और नाम ले सकूं फॉर रेड हॉट चिली पेपर्स गिव अवे. आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया जी, बहुत बहुत शुक्रिया. और आप सबका जो जिस सीक्वेंस में नंबर आता है उसी सीक्वेंस में मैं एक मैथ के फॉर्मूले में डालती हूँ और फिर आपकी लक ही आपकी विन का फैसला करती है. मैं बिल्कुल फैसला नहीं करती. सो पार्टिसिपेट करते रहिए. फनीजा इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए लेकर आता है 24/7. हम यहाँ आपकी एंटरटेनमेंट के लिए मौजूद रहते हैं.

0: ऑलराइट, के की आवाज हो, आपकी दुआ, दिल हार गया हो गाना, तो फिर तो कहीं जाने का दिल नहीं करता, खास तौर पे ब्रेक पे जाने का तो बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन ब्रेक का वक्त आ चला है जी। मैं लेके जा रही हूँ आपको ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आकर अभी मेरा और आपका एक घंटा और एक साथ मौजूद है। आई एम हेयर विद यू टिल 5 PM। मैज का फोन नहीं आया, तो अब जो हमारे नेक्स्ट लकी विनर हैं वो हैं मुकेश। मुकेश कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने रेड हॉट चिली पेपर का ये गिव अवे। मेरे पास आपका नंबर है, आई विल सेंड योर नेम एंड नंबर टू द रेस्टोरेंट।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन, ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG FinTax, ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर क्वाजा, इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
8: कौन सा?
7: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
8: अरे सारे तो सेम है।
7: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
8: ओ हाँ, ये तो अलग है।
9: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
10: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
11: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
12: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
9: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
11: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
13: छोटा सा मेरो मदन गोपाल।
14: DFW Hindu Temple cordially invites you and your family to a week of divine devotion and spiritual enlightenment through the sacred Srimad Bhagavat Katha. From June 28th through July 4th, 2026, experience the nectar of Bhagavatam as it is beautifully narrated by the world-renowned devotional singer and spiritual orator, Acharya Shri Mridul Krishna Goswami Ji, Pramukh Seva Adhikari of Shri Bake Bihari Mandir, Vrindavan. Mahaprasad will be served daily for all devotees. For more information, visit dfwhindutemple.org. Jai Shri Krishna.
15: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
16: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
15: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
16: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
9: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
17: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ

0: या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
1: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
2: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
3: लिया।
2: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
3: नहीं आया।
2: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। Whether it's home, auto, health or business, every policy is customized around you. Hotels, motels, gas stations and small businesses, they help protect what you worked hard for. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
4: Visit www.sanadainc.com today.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
9: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.

You tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. Thank you so much for connecting with me this afternoon. एक घंटा और मैं आपके साथ मौजूद हूँ. और मंडेज का दिन दो लिहाज से स्पेशल होता है. एक तो ये कि जी आपकी फरमाइशें लेती हूँ, आपकी फरमाइशों के गाने प्ले होते हैं, और दूसरा ये कि 4:30 to 5 तक हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं संजय माथुर जी फ्रॉम द माथुर लॉ ऑफिसेस. सो 4:30 to 5 तक ही विल बी हियर लाइव टेकिंग योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग सिविल लिटिगेशन, लिटिगेशन, इमिग्रेशन, फैमिली लॉ. जो भी आपका सवाल है आप उनसे यहाँ पे फन एशिया रेडियो पे कर सकते हैं. इस वक्त जो अगला गाना प्ले कर रही हूँ वो खास तौर पे प्ले हो रहा है जी वसीम साहब की फरमाइश पे. कर रहे हैं डेडिकेट ये गाना अपनी वाइफ को. दिस इज अच्छी लगती हो.

वेल, एक पॉइंट पे मैं आपको लेकर आ रही हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट जो आपके लिए आ रहा है डैलस पे. बॉलीवुड के फैन हैं आप, अच्छे म्यूजिक के फैन हैं आप, इन दोनों के फैन हैं आप एज अ पर्सन, तो ये मौका आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते. विशाल और शेखर, द डुओ बिहाइंड सम ऑफ बॉलीवुड्स बिगेस्ट सुपर हिट्स, आ रहे हैं आपके शहर, यानी कि सुपर हिट टूर लेकर आ रहे हैं डैलस. और कब है जी ये टूर? दिस इज हैपनिंग ऑन संडे जुलाई द 12th, हैपनिंग एट द कर्टिस कलवल सेंटर गार्लिन में लोकेटेड. टिकट्स आपके लिए अवेलेबल हैं, मैं आपको वेबसाइट का एड्रेस देती हूं जहां जाके आप अपने टिकट्स खरीद सकते हैं. दिस इज कैश पटेल प्रोडक्शंस डॉट कॉम. लेट मी स्पेल इट आउट फॉर यू. इट इज KASHPATEL productions.com. यहाँ पे लॉग ऑन कीजिए, अपना टिकट खरीदे विशाल शेखर के इस लाइव कॉन्सर्ट का जो कि डैलस में आपके लिए होगा संडे 12th जुलाई को कर्टिस कलवल सेंटर में. और जब आप चेकआउट करें तो फन एशिया प्रोमो कोड इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा. FUNASIA फन एशिया प्रोमो कोड इस्तेमाल कीजिए टू गेट 30% discount. It cannot get any better than this. Aapka pasandida duo with a 30% discount. Check out cashpatelproductions.com. Aur ab Vishal Shekhar ki baat ho rahi hai, to ek gana unki is film ka banta hai.

वैसे तो हर रोज आपके लिए ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में वेदर अपडेट आती है 4:30 बजे के बाद, लेकिन मंडेज इज स्पेशल बिकॉज मंडे को 4:30 से 5 बजे तक हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं संजय माथुर जी. आज भी कनेक्ट करेंगे हमारे साथ फ्रॉम माथुर लॉ ऑफिसर्स. विल बी टेकिंग योर कॉल्स लाइव. यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कॉल अस एंड आस्क योर क्वेश्चन लाइव. अगर मैं आपको होल्ड पे डालूं और आपको माथुर साहब की आवाज आ रही हो कि वो किसी का जवाब दे रहे हैं, किसी सवाल का या कोई बात कर रहे हैं, तो प्लीज कॉल ड्रॉप मत कीजिएगा अपनी. इसका मतलब यह है कि आप नेक्स्ट इन लाइन है टू आस्क योर क्वेश्चन. इफ यू आर लिसनिंग टू हिम, इफ यू आर हियरिंग हिम कॉलिंग यू और अबव, तो आप प्लीज होल्ड कीजिएगा अपना स्पॉट लाइन में. विद दैट इट इज टाइम नाउ टू गिव यू द वेदर अपडेट. मंडे जून द 29th 4:21 PM इन द स्टूडियो एंड अकॉर्डिंग टू वेदर बग सिटी ऑफ मिकिनी में इस वक्त है जी 95 डिग्रीज. हाउएवर इट फील्स लाइक 102. गर्मी ने चारों ही तरफ अपनी शिद्दत के रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं, या खास तौर पे यूरोप का जो हाल इस वक्त है वो काफ़ी परेशान कुन है. सो वी आर विशिंग एवरीवन ऑल द बेस्ट. आज का दिन हमारे यहाँ यानी कि सिटी ऑफ मिकिनी में रहा सनी विद हाईज इन द मिड 90s, जबकि शाम रहेगी मोस्टली क्लियर विद लोज इन द मिड 70s. पोलन काउंट 5.6 विच इज मीडियम, और जो चीज़ पोलन में परेशान कर रही है आज दैट इज ओनली ग्रास. UV index is 11, extremely high. Keep your sunscreens handy. Keep yourselves hydrated if you are planning to be outside for any need or purpose. Sunrise aaj ka hua 6:20 PM, 6:20 AM, jabki aaj ka sunset hoga 8:39 PM. That was your weather forecast for today.

0: ऋचा शर्मा की आवाज में सुन रहे थे आप ये ट्विस्ट ऑफ लंबी जुदाई. वैसे ओरिजिनल लंबी जुदाई था, आपको याद है ना, दैट वाज टेकन फ्रॉम द मूवी हीरो, जिसमें मीनाक्षी थी और साथ ही साथ थे जैकी श्रॉफ. और गाना था लंबी जुदाई, वो बस यही था कुछ इसी तरह का. और अब जो है जी, मैं आपको लेके जा रही हूँ ब्रेक की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको जल्दी से करेंसी अपडेट देती चलूँ. US डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है. सो राइट नाउ यूरो इज ट्रेडिंग एट 0.87, ब्रिटिश पाउंड एट 0.75, इंडियन रुपी 94.74 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि कैनेडियन डॉलर 1.42 पे ट्रेड कर रहा है. पाकिस्तानी रुपी 278.00 पाकिस्तानी रुपी इज ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर, जबकि नेपालीज रुपी 151.65 नेपालीज रुपी आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर. और बांग्लादेशी टका 123.06 पे स्टैंड कर रहा है. विद दैट वी आर हेडिंग ऑन टू अ शॉर्ट ब्रेक. आफ्टर द ब्रेक वी विल बी कनेक्टेड विद संजय माथुर जी फ्रॉम द माथुर लॉ ऑफिसेस. स्टे ट्यून्ड.
1: ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ ആണല്ലോ, ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ.

0: और हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आकर कनेक्टेड होंगे हमारे साथ संजय माथुर जी फ्रॉम माथुर लॉ ऑफिसेज. आप सबकी फोन कॉल्स यूं ही आती रहनी चाहिए. यू हैव एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क हिम, दैट इज योर ऑप्शन. गिव अस अ कॉल.
1: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में. सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ. वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं. तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स. HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर.
2: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
3: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
5: इतना सब और प्राइस?
4: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
6: मैं हीरो.
7: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
8: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां मां सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को.
9: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
8: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग. ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो. श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
10: क्या मतलब?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
10: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
14: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
13: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
14: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट.
15: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
16: इट्स लॉसन.
15: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
16: इट्स लॉसन.
15: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
17: इट्स लॉसन ट्रेवल्स फॉर ऑल योर ट्रेवल नीड्स. गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458. द ट्रेवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रेवल.
18: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
19: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
18: कैसे?
19: पेज 3 ईटरी?
18: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
19: ड्यूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
18: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
0: पेज 3 ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट.
18: मामू, देखो क्या हो गया.
11: ओ, क्या हो गया?
18: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया. और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
11: ओए, जर्मन का कमाल है.
18: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है.
11: ओ नहीं, ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन. मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं, और A1 करते हैं यार. तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623. कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार.
2: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस.
8: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है.
6: चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कॉम्पिटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव.
19: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
6: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
16: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM Fun Asia Radio.

0: या आप H1B पे हैं एंड लुकिंग ऑप्शंस विद 5% और 10% और इवन 3% डाउन. सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189 क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 926641.
1: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
2: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
1: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
2: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
1: सच में सब संभाल लेंगे?
2: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन partner.

पापा जी ने बच्चा जी की तलाश ली। जैकेट में से निकला एक लाइटर और कुछ नंबर लिखे हुए थे और कुछ लड़कियों का नाम लिखा हुआ था। बाप ने बहुत मारा और बोला, कब से चल रहा है ये सब? बोला, पापा ये जैकेट आपकी है यार।

0: Dalvinder Singh NDS come out with this track just about 11 hours ago. 3.6 million views it's crossed already on YouTube. Dalvinder Singh, by the way, if you don't know, is a very upcoming Punjabi artist, Punjabi slash urban artist, I would say. And he's done shows all across India recently. And he's very popular, especially on the East Coast. And I think the West Coast is now gearing up as well. Dalvinder Singh, that's the name if you haven't heard it. I'm going to take a short commercial break. Kahin mat jaiye, yun gaya, yun aaya, right back on Fun Asia.
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: Did you know LASIK is just one of six ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
4: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
3: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
5: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
6: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
5: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
6: वेट, व्हाट?
7: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
8: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
7: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. Call 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
9: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
10: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
9: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
10: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
11: यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है. हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस.
12: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं.
11: सच में एक्सपेंसेस से इनकम? कैसे?
12: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू. उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है.
11: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं वापस भी आएंगे.
12: एग्जैक्टली. अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर.
11: नंबर बोल जल्दी.
12: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com.
13: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश.
0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल. फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम Garland, where every bite is a celebration.
14: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
15: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: आप लोगों ने नोटिस जरूर किया होगा कि जिस घर में बहू नहीं ना होती, जिसमें अभी शादी नहीं हुई होती, उस घर में ना मच्छर वगैरह ज्यादा फिनपते हैं और बहुत सारे होते हैं। फिर जब शादी होती है धीरे धीरे धीरे धीरे वो मच्छर कम हो जाते हैं। अब इसमें पता है क्या बात है, बात यह है कि जो घर में शादी हो जाती है, बीवी आ जाती है, फिर वहां के मच्छर भी सोचते हैं कि चल अब तो परमानेंटली पीने वाली आ गई है, हमारा यहाँ क्या काम। सो मच्छर टेक द लीव एंड दे गो टू अनदर छड़ा हाउस। नाउ यू नो द राज व्हाई इन मैरिड होम लेस मस्कीटो।
1: प्यास है बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है बंदा ये बिंदास है।
0: बंदा बिंदास जी, नाम अरविंदास है। 5:25 इन द स्टूडियो क्लॉक, 5:25 हो चुके हैं और मैं रहूंगा आपके साथ 7 बजे तक। मंडे की शाम है, बस मंडे है, मन की करो। मैंने मेरे मन में था, मैंने मेरे मन को भाया, मैंने आज ढोकला खाया। किसी और के मन को भाया उसने, भाव भाव काट के खाया। पर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, खीरा वीरा काटें, उस पे ना नींबू नमक लगा के थोड़ा सा लाल मिर्च, ओए होए इस जो गर्मी है ना उस हिसाब से ये चीजें खाओ। आप खाओ वाटरमेलन, आप खाओ जी कैंटलोप, खरबूजा है जी, और आप क्या खा सकते हो, स्ट्रॉबेरी, श्रॉबली, ब्लूबेरी, शेबेरी, और कोई गन्ने का रस, अदरक और नींबू पा के दे दे तो बस बल्ले। This part of the show is brought to you by Shri Krishna Jewelers, जो कि आ चुके हैं जी आपके लिए फ्रिस्को में on 13145 Suite 200। Ladies को मैं पहले बता चुका हूँ, सोने की खरीदी करें। सोना एक ऐसी चीज है जिसने पैसे की वैल्यू गिरनी नहीं, इसकी बढ़नी है जी। इतिहास इस बात का गवाह है। ये जो मेटल शटल के टॉय हैं, आपके हस्बैंड की गाड़ियां लेते रहते हैं महंगी महंगी, इसका कोई फायदा है नहीं। वो जो घड़ी लेते रहते हैं रोलेक्स, कोई चलो रोलेक्स ठीक है, बाकी जो है फालतू के खर्चे करते हैं आईफोन, ये फोन, ऑल डिप्रिशिएटिंग एसेट्स। गो गेट योरसेल्फ सम कुंदन, सम पोल की, सम डायमंड, क्योंकि डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। और अगर मर्द ये अभी तक नहीं जाने हो तो जान लीजिए, दे दीजिए उनको क्रेडिट कार्ड, लेट हर जीले अपनी जिंदगी। अब लाए हो तो देखो, थोड़े नखरे तो भाई करने पड़ेंगे ना मेरी जान। रिमेंबर द नेम श्री कृष्णा ज्वेलर्स।

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
4: Documents या parcel भेजनी है?
5: हाँ।
4: घर relocate करनी है?
5: हाँ।
4: गाड़ी भी transport करना है?
5: हाँ भाई हाँ।
4: तो फिर tension क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को call कर।
6: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sirf India nahi, USA aur duniya bhar mein trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
12: इट्स लॉसन।
11: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
12: इट्स लॉसन।
11: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
13: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे, 2146312458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
14: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री, NMLS 2025289, लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सास। ऑल लोन सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल, इक्वल हाउसिंग लेंडर।
15: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहाँ माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
16: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
15: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
17: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं,
18: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
19: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
18: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
20: लुकिंग टू अर्न एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल इनकम और इवन बिल्ड अ न्यू करियर? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers, we are growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship and access to top-rated products like annuities, term life, whole life and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
21: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
22: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

बड़ा ही मिलावटी सा जमाना है भैया, पर ये गाना बिल्कुल मिलावटी नहीं था। ये ब्रांड न्यू फिल्म आ रही है जी अल्फा, आलिया भट्ट हैं जी इसमें शर्वारी हैं और बॉबी साहब साथ में नजर आएंगे। एंड दिस इज द ट्रैक दैट यू जस्ट हर्ड दैट केम आउट वेरी रिसेंटली। अगर मैं इसकी टाइमिंग की बात करूँ तो 5 दिन पहले आया जी गाना। एंड दिस इज कॉल्ड बम बम, द ऑफिशियल सॉन्ग फ्रॉम अल्फा द मूवी। यू लिसनिंग टू इवनिंग ड्राइव टाइम शो, वेलकम बैक। इट्स 5:48 इन द स्टूडियो क्लॉक। मैं हूं जी बंदा बिंदास, मारविन दास, एंड मैं रहता हूं आपके साथ साथ मंडे टू थर्सडे 5 to 7 PM। अच्छा, आपको पता है ये मिलावटी ज़माना है, मैंने कहा आपको बिल्कुल मिलावट हो रही है, गाने भी लोग मिलावट करके बना देते हैं आजकल। पर इस मिलावटी ज़माने में ना, आज भी एक जगह है जहाँ से 100% अच्छा जेन्युइन काम देखने को मिलता है। चाहे हर जगह मिलावट है, आप ना एक काम कीजिएगा, आपके घर में ही है वो चीज़, आज भी बिजली वाले जो है ना 100% प्योर इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। और भाइयों, अगर आपको यकीन नहीं है ना, भाभी को बोलना तार पकड़ के देख ले, 100% प्योर है। I recently watched the movie Welcome to the Jungle full on, मतलब बस वेलकम वाली फीलिंग आ गई है जी, आ गई है, एंटरटेनिंग है, फुल ऑन।

जून 29th was the day जब एप्पल ने एक ऐसा एप्पल निकाला जिसको हम सब खा के पछता रहे हैं पर हमारा एप्पल ही एप्पल चल रहा है जी. 2007 was the year when this Apple incorporated the first mobile smartphone, the iPhone went on sale and it revolutionized the industry and that is totally totally true. आज ही का दिन था, या यकीन होता है आपको 19 साल हो गए भाई इस फोन को, नहीं 19 क्यों, 19 से भी ज़्यादा हो गए ना, 19 प्लस 3 मरविन जी 22 साल हो गए, 22 ईयर्स पहले, नहीं यार 26 और 19 ही हुआ ना, 2009 है मारून, क्या हो गया, तो गलत टाइम लिख रहा था. हाँ तो भैया मैथमेटिक्स में ना मेरे 30 नंबर थे बोर्ड के एग्जामिनेशन में, तो माफ़ कीजिएगा, बट ये 2007 में आया था, दैट मीन्स इट हैज़ बीन कितने 16 प्लस 3 19 साल. एब्सोल्युटली मारून, पहला गैस बिल्कुल सही था. 19 ईयर्स सिंस दिस एप्पल आईफोन फर्स्ट केम आउट and that we all are holding majority. हाँ अभी भी कुछ fight है कि नहीं Android better, Apple better, but I think it's people who use a certain phone. अगर आप Android से used to हैं तो आपको Android अच्छा लगता है, और अगर आप iPhone used कर रहे हैं तो आपको iPhone अच्छा लगता है. This is the simple way it goes. खैर मेरे पास एक giveaway है coming up from Miraj Lounge, which is now open for you right at the intersection of McKinney Ranch, Parkway, and this is Miraj Lounge. इसमें क्या होता है जी, of course it's a hangout spot that has all the specials that you look for, जैसे कि hookah, delicious bite, handcrafted cocktails, live music and exciting DJ nights all under one roof, and happy hours run through from Monday to Thursday 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, पूरा दिन हैप्पी आवर इंक्लूडेड है, एंड हुकर्स स्टार्टिंग एट जस्ट 24.99, शॉट्स फॉर ओनली 4.99. डोंट मिस द फन, लेडीज नाइट एंड कॉलेज नाइट वहां होती रहती है. विजिट मिराज लाउंज ऑन मकिनी रेंज पार्कवे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. साथ साथ आपके पास अब है मौका टू विन $20 ऑफ देयर बिल ऑफ $50. अगर आप $50 वहाँ खर्चेंगे आपको $20 टोटली ऑफ मिलेगा. फॉर दैट यू हैव टू आंसर अ क्वेश्चन फॉर मी. सवाल मैं पूछूंगा, जवाब आप देंगे, जो देगा सबसे बढ़िया क्रिएटिव जवाब उसको मिलेगा जी गिव अवे. पूछना ये रहा मेरा सवाल, और ये रहा मेरा सवाल. बीवी ने कहा बाजार से मेरी माँ के लिए कुछ ले आइए. बीवी ने कहा बाजार से मेरी माँ के लिए कुछ ले आइए. अब क्रिएटिव दिमाग के घोड़े दौड़ा के आप बताइए कि आप उनके लिए क्या लाएंगे. 9722355555 9722355555. भाभी ने कहा जाओ मेरी माँ के लिए बाजार से कुछ लेके आओ, तो आप क्या लेके आएंगे. 9722355555. क्रिएटिव आंसर को मिलेगा $20 ऑफ देयर $50 बिल एट मिराज लाउंज इन मिकिनी. सुनो जी, मेरी माँ आई हुई है बाजार से, उनके लिए कुछ लेके आओ. What will you bring? 972-235-5555.

0: All right, the Telecon. Yes, yes, sir. Hello to you. Good evening. What's your name, sir?
1: Hey, my name is Ashwin.
0: Ashwin bhai, how are you, sir?
1: I'm doing good. आप कैसे हैं?
0: अश्विन भाई, मैं बचपन में गिर गया था, कुछ चोटें तो ठीक हो गई हैं, पर अंदरूनी दिमाग की चोटें अभी भी तंग करती हैं मेरे दोस्त. तुम बताओ कैसे हो? सब ठीक है? अश्विन भाई, ये बताइए कि अगर भाभी कहती है आपको कि मेरी बीवी माँ के लिए बाजार से कुछ लेके आओ, क्या लेके आते हैं अश्विन भाई? जल्दी जल्दी जल्दी.
1: पूरी तरह से सोचा नहीं, बट गोल्ड ज्वेलरी.
0: गोल्ड ज्वेलरी, यार बड़ी कमाल के दामाद हो आप जैसा दामाद, आप जैसा दामाद दुनिया भर को मिले. गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, कौन बोल रहे हैं?
2: हाय जी, गुड इवनिंग.
0: हाय जी, गुड इवनिंग जी, कौन बोल रही हैं?
2: जी समा बात कर रही हूँ.
0: समय
2: सबा
0: समा समा है सुहाना सुहाना के सबा ऐसे
2: सबा
0: भी,
2: सबा ऐसे भी
0: सबा सबा सबा सबर से. अच्छा सबा जी, अगर आप तो पर आप तो आदमी हो नहीं, तो आप कैसे मतलब अपनी सास के लिए कुछ लेके आओगी? पर चलो पर चलो अगर आप मार्विन होती चलो अगर आप मार्विन होती हाँ
2: तो मैं सास लेता नहीं. मैं अपने मेरे हस्बैंड कहते कि दो टिकट ले आओ वापस की.
0: दो टिकट ले, दो टिकट. अरे सभा कहती हैदराबाद से सभा जी?
2: नहीं मैं पाकिस्तान से.
0: पाकिस्तान से? पर टिकटा जैसे आपने बोला मियां, बिल्कुल ऐसा लगता है हैदराबाद का टिकटा दक्कन के. कोई बात नहीं सभा जी, आपका आंसर मैंने स्टोर कर लिया. टिकटें कहती हैं दो लेके आना, एक माँ के लिए और बीवी के लिए साथ में फ्री, ऐसा सिस्टम है आपका?
2: नहीं वो उनसे कहूंगी बस टिकट लें और वो वापस जाएं.
0: टिकट लें और वापस जाएं, मेरा जान छोड़े. रेडियो का वॉल्यूम कम कर लो, अपना वॉल्यूम बढ़ा लो. कौन बोल रहा है?
3: मैं पार्थ बोल रहा हूँ.
0: पार्थ भाई क्या हाल है, क्या क्या कह क्या ले क्या लेके आते हैं सासू माँ के लिए जल्दी से?
3: मैं जब सुना तो तुरंत मैं ही खुद आ जाऊंगा.
0: क्या क्या क्या क्या क्या?
3: मैं खुद आ जाऊंगा उनके पास.
0: खुद आ जाऊंगा? आप तो हो वहाँ पे. वो कह रही है कि जाओ मेरी माँ के लिए कुछ लेके आओ, तो क्या लाओगे?
3: तो बेसिकली साड़ी लेके आऊंगा.
0: साड़ी लेके आओगे?
3: हाँ जी.
0: क्यों?
3: साड़ी ओडिशा में, मतलब ओडिशा से हूँ मैं, तो
0: साड़ी. अच्छा चलो चलो, पार्थ भाई कहते हैं साड़ी फेमस होता है. ठीक है पार्थ भाई, लिख लिया आपका जवाब. गुड इवनिंग फनीशिया, कौन बोल रहे हैं?
4: हाय इट्स नीलाद्रि हियर मार्विन.
0: गुड इवनिंग, व्हाट्स योर नेम?
4: नीलाद्रि.
0: नहीं समझ आया, नीलाद्रि. ये तो मेरे नंबर थे मैथमेटिक्स में, मतलब 30 थे पर नील के बराबर ही थे. अच्छा नील, अब बताइए आप क्या लेके आते हैं आप अपनी सासू माँ के लिए? वंस द बीवी सेड गो गेट समथिंग फॉर माय मदर.
4: टू टिकट
0: मूवी थिएटर की के?
4: नहीं नहीं, रिटर्न टिकट.
0: रिटर्न टिकट दो लेके आते, एक माँ की एक बीवी की.
4: Yes.
0: दूसरा आंसर आया मेरे पास टिकट वाला. अब देखता हूँ और कौन है. रेडियो का वॉल्यूम कम कर लो, अपना बढ़ा लो. मुझे पता है आपको एक्साइटमेंट होती है कि मार्विन रेडियो पे क्या बोल रहा है, हम वो भी सुने और मार्विन से बात भी करें. दोनों चीजें साथ साथ नहीं हो सकती, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया. द होल नेशन वॉन्ट्स टू नो. आपका जवाब क्या है, कौन बोल रहे हैं?
5: मैं राजेश बोल रहा हूँ.
0: राजेश भाई बताओ क्या लेके आते हैं अपनी सासू माँ के लिए?
5: मिराज लाउंज से दो हुक्का ले आएंगे, एक मेरे लिए और उनके लिए.
0: मिराज लाउंज से दो हुक्का लेके आएंगे, एक मेरे लिए एक उनके लिए. क्या नाम बोले थे आप अपना? राजेश. राजेश तुम्हारा नाम भी इतिहास में लिखा गया है. राजेश और कोई है जो अपने मन की भड़ास पूरा करना चाहता है? आज जाओ. कौन है? गुड इवनिंग फनीशिया. रेडियो का वॉल्यूम कम कर लो, अपना ज्यादा कर लो, मेरे हाथ जुड़वा लो, मैं आऊँ क्या गाड़ी में बैठने और रेडियो धीरे करने? ऐसे ना करें मेरे साथ. कौन बोल रहे?
6: हेलो मार्विन भाई, गिरीश.
0: गिरीश भाई रेडियो का वॉल्यूम पहले कम कर लिया करो, कान फट जाएगा मेरा एक दिन बाई गॉड, और फिर मैं आपके शो नहीं कर पाऊंगा, फिर कितना दुख होगा. मेरे दो छोटे छोटे कुत्ते घर पे भूखे मर जाएंगे. अच्छा अब बताओ आप क्या बोलेंगे, क्या लेके आएंगे?
6: मैं पनीर लेके आऊंगा.
0: पनीर क्यों लेके आएंगे?
6: क्योंकि वो मुझे पसंद है और वो बहुत अच्छा बनाती है उसकी माँ.
0: अरे यार तुम लोग इतने इमोशनल पीपल लोग हो ना यार. देखो मैं होता ना अगर, तो एक आंटी ने, दीदी ने ठीक बात बोली सभा जी ने, कहती मैं तो दो टिकटा लेके आती वापस भेज देती. मैं भी कुछ ऐसा ही करता, मैं उनके लिए लेके आता टैक्सी, बैठो और जाओ. All right, the winner for my segment is Sabha. Sabhaji, if you're listening to me, give me a call. 972-235-5555. But achhi cheezein bhi milti hain Dallas-Fort Worth mein. वो भी लेके जा सकते हो आप, कभी कभी मिराज लाउंज उनको ले जाइए और $20 की बचत पाइए $50 के बिल पर। सबा जी, इफ यू लिसनिंग टू मी गिव मी अ कॉल, यू वन योरसेल्फ $20 ऑफ योर $50 ऑर्डर एट मिराज लाउंज नाउ ओपन ऑन मिकिनी पार्कवे राइट हियर इन मिकिनी। छोटे से ब्रेक के बाद मैं आया वापस, यू गाइस डोंट गो एनीवेयर बिकॉज अभी एक घंटा बाकी है मेरे दोस्त।
7: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
8: Official tax and finance partner, AG FinTax.
7: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
8: In association with Passion Health Primary Care.
9: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
10: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
11: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
12: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, a division of Brazos National Bank.
13: Ye set sirf shaadi ke liye theek hai. Ye wala bahut heavy hai. Aur ye kab pehna tha last time?
14: To pehenti kyun nahi ho?
13: Kaise pehnu? Ya to heavy ya fir special occasion type.
14: तो रोज वाला ले लो।
15: India's most loved everyday jewelry brand, Karat Lane is here. Get your everyday real diamonds now. Because jewelry is meant to be worn, not to be kept inside a locker. Karat Lane now open next to Tanishq in Frisco.
16: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
17: बैठ जाऊँ? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
18: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
17: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
19: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
20: इन प्लेनो,
19: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870, पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
16: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
21: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
22: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
23: Calculating route, rerouting.
22: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है।
23: Location upgraded, now heading to India Bazaar Fort Worth.
22: क्यों?
23: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के smart लोग जानते हैं। Daily groceries हो या Pooja essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
22: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
15: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
23: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
24: आई एम सो स्ट्रेस्ड, क्रेडिट कार्ड बिल्स, अनसिक्योर्ड डेट्स, व्हाट आर वी गोइंग टू डू?
25: कुछ भी नहीं, उरा डेट रिलीफ विल डू इट फॉर अस।
24: क्या मतलब?
25: उरा कैन हेल्प अस सेव अप टू 50% ऑन आवर टोटल डेट एंड द रेस्ट वी पे इन इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स।
24: बट व्हाट इफ इट डजंट वर्क? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
25: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
24: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
15: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
26: Same day से bore हो गए। Try something different. Mexican fusion, global flavors, happy hours. Neon Cactus Fairview. Mexican, but different. Exactly.
27: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
28: अच्छा,
1: मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।

पति ने पत्नी को वश में करने के लिए पीपल के पेड़ पे लाल धागा बांधा। अगले दिन सुबह देखा तो पीपल का पेड़ ही आंधी में उड़ गया था। दोस्तों आपको ये बताता चलूं कि मेरे पास एक गिव अवे आ गया, विच इज नाउ फ्रॉम पांच तारा। बल्ले बल्ले बल्ले, पांच तारा एलन में आ चुका है जी आपके लिए। फ्रिस्को के बाद नाउ दे आर इन एलन, राइट एट द इंटरसेक्शन ऑफ मैकडर्मट एंड कस्टर एंड मैकडर्मट पे है जी। और आपको दे रहे हैं मौका टू विन देयर आलू वाला नान या फिर छोले भटूरे। मैं होता तो छोले भटूरे खाता जी, क्योंकि वैसी चीज दुनिया में है ही नहीं, बनी नहीं है। सबसे बढ़िया चीज छोले भटूरे, तेल तूल को देखना नहीं है आपने, मजे से खाने, क्योंकि नो नैपकिन शैपकिन है जी। हमें नैपकिन फालतू वेस्ट करना है आपको। पेपर पता है, पेपर पेड़ों से बनता है, थोड़ा सोच के पेपर को आप इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पे जाके मज़ेदार ये चीज़ खाएंगे। इनकी खास बात क्या है कि जो छोले भटूरे बनाते हैं ना, इसके ऊपर ना वो प्याज टमाटर छोटा छोटा काट के डाल के देते हैं और बड़ा मज़ा आता है भाई उसको खाने का। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जो देगा सही जवाब उसको मिलेगा जी पांच तारा का ये वाला गिव अवे। अब सवाल मैं पूछूंगा, एक जवाब जो मुझे तीसरे नंबर पे देगा। तीसरा नंबर क्यों? बस प्लीज डोंट आस्क सर्टन थिंग्स आर वेरी सीक्रेट एंड दिल की गहराइयों में कई चीज़ें बदी होती हैं, उनको दबी रहने दो। ये राज के तीन नंबर क्यों, बस दबे रहने दो। क्योंकि मेरे जब प्री बोर्ड चल रहे थे ना, तो मेरे फिजिक्स में तीन नंबर आए थे प्री बोर्ड्स में। मैं टेंथ में पास हो गया था, पर क्रिकेट खेलते थे ना हम, कहाँ फोकस होता था उस टाइम पर हमारा, तो हम लास्ट में मतलब एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने वाले बच्चे थे, तो तीन नंबर इसलिए। अब समझ आ गया तीन नंबर क्यों। जो भी तीसरे नंबर का कॉलर मुझे देगा सही जवाब, उसको मिलेगा जी ये इनाम। मैं लगा रहा हूं एक, कैसा करें आपके साथ, सिंपल दें, थोड़ा ट्विस्टेड कर दें, थोड़ा सा मुश्किल दे दें। चलो चलो थोड़ा सा मुश्किल देते हैं। मैं लगा रहा हूं एक गाना, इसमें जो फीमेल सिंगर है उसका नाम आपको मुझे बताना है, ठीक है? और इसी सिंगर का आज बर्थडे है, ठीक है जी? और ये जो फीमेल सिंगर है, ये जो अंग्रेजी में गा रही है, आपने उसका नाम बताना है मुझे। द वन हुज सिंगिंग इन इंग्लिश, ऑल राइट, विच इज़ द सॉन्ग, ये रहा गाना। कॉलर नंबर थ्री जो देगा सही जवाब, कि किस फीमेल सिंगर का जो अंग्रेजी में गा रही है उसकी आवाज़ है, किसकी आवाज़ है ये आप बताओ।

0: Alright, let's see who do we have with us on the Airwaves of Fun Asia Radio. पहले नंबर पे कौन बोल रहा है? आपका नाम बताइए.
1: Summer.
0: Summer, in the summer, how are you, man? It's too summer, but that's fine, Summer.
1: How are you?
0: I'm fantastic, Summer. Tell me, do you know the name of the lady that is singing that track?
1: Tanvi Shah.
0: Who?
1: Tanvi Shah.
0: Tanvi Shah. Aap kehte hain Summer Tanvi Shah. Let's see if you have the right answer or not. Let me get to number two here. Good evening, Fun Asia. Who is this?
2: Hey, hi, this is Nilesh.
0: Hi, Nilesh. How are you? Kaise hai Nilesh Babu? Sab theek hai?
2: Ekdam badhiya, sir.
0: Nilesh bhai, ye baki to chhodo, kya kar rahe hain desh? Aap bataye Nilesh, naam kya hai ladki ka?
2: Ladki singer ka naam hai Nicole Scherzinger.
0: Nicole Scherzinger kehte hain ji. Nilesh bhai, Nilesh bhai, aapne Zinger burger khaya kabhi?
2: नहीं सर, हमने नॉर्मल बर्गर ही खाया है.
0: नॉर्मल बर्गर ही खाया है. चलो कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ कुछ और भी खाने का मौका आपको मिले, ये हम दुआ करते हैं आपके लिए. फिलहाल थर्ड नंबर कॉलर लकी वन, हु इज दिस?
3: हेलो,
0: हाय, गुड इवनिंग.
3: गुड इवनिंग, इज द आंसर तन्वी शाह?
0: ओ, गलत जवाब रीमा, गलत हो गया. चलो एक लास्ट मौका है किसी के पास. इफ दिस इज द राइट वन, यू गेट योरसेल्फ पांच तारा के छोले भटूरे. गुड इवनिंग, आपका नाम? हेलो, टॉकिंग टू यू जेंटलमैन और मिस. गुड इवनिंग, कैन यू हियर मी? आई कैन एब्सोल्युटली हियर यू. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल ऑफ योर लाइफ, यू नो, यू शुड बी पेइंग अटेंशन हियर आल्सो. गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका?
4: यस सर, एवरी इवनिंग आई ट्राई टू.
0: आपका आपका आपका नाम सर, आपका नाम?
4: दिस इज देवेंद्र.
0: देवेंद्र, देवेंद्र भाई, आई एम फैंटास्टिक. लड़की का नाम मालूम है?
4: यार पुसीकैट डॉल्स की सिंगर है कोई, तो भी नाम तो नहीं मालूम.
0: अरे भैया, फिर तो मेरे को छोड़ना पड़ेगा ना आपको यार. गुड इवनिंग फन एशिया रेडियो, वॉल्यूम कम आपका ज्यादा, कानों को मत फाड़ दीजिएगा. कौन बोल रहे हैं?
5: हेलो, हाँ जी सर, दीपक वर्मा बोल रहा हूँ.
0: वर्मा साहब, कैसे हैं आप?
5: बिल्कुल ठीक है जी, आप सुनाओ, क्या हाल चाल आपके?
0: बढ़िया बढ़िया. वर्मा साहब, आपसे कभी चाय पीते हुए प्याला तो नहीं गिरा ना?
5: नहीं जी.
0: बढ़िया बात है,
5: मैं पीता ही नहीं हूँ.
0: अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. पीने वाली, जो पीने वाली चीज आपके घर में है, उसको जो पीना है वो पी लेती है. अच्छा, आप ये बताओगे, नाम पता है आपको सिंगर का?
5: हाँ जी पता है, गैस करूंगा.
0: गैस ही करना है?
5: I'm not sure. हाँ जी, आई थिंक हर नेम इज निकोल श्रेजिंगर.
0: निकोल श्रेजिंगर बर्गर, बिल्कुल ठीक है भाई. होल्ड ऑन द लाइन, पांच तारा के छोले भटूरे आपके. होल्ड द लाइन फॉर मी. यस, इट इज निकोल श्रेजिंगर एंड शी वॉज बॉर्न ऑन टुडेज डेट, June 29th, 1978. बस छह साल पहले पैदा हो गई मेरे से, और ये होनोलुलू में थी, मैं इंडिया में था. कहीं हम मतलब हमारे रास्ते नहीं टकराए, नहीं तो यू नो मी, सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट. She would be my elder sister. That's all I would do, man. Pussycat Dolls ko chalati thi. Known for her tracks like Doncha and Stick With You. She is celebrating her birthday today. Happy birthday, Nicole, from the team here at Fun Asia and from Banda Bandas, with the next track, leaving you until we get to the break.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था। ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं। आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक। फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले। हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
2: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा। आपका हक, उनके जिम्मेदारी।
4: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
5: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
4: कहाँ?
6: फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
2: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, one vibe. Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
7: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां मां सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
8: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
7: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
9: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
0: बाइंग और सेलिंग अ होम इजंट जस्ट अ ट्रांजैक्शन, इट्स वन ऑफ लाइफ्स बिगेस्ट डिसीजंस एंड इट डिजर्व्स द राइट गाइडेंस। आई एम नवनीता, your trusted realtor with Keller Williams Realty. I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
2: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.

0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़ावे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
1: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
2: लिया।
1: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
2: नहीं आया।
1: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है। इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक, 972-863-7772. That's 972-863-7772.
3: Visit www.sanadainc.com today.
4: Same taste se bore ho gaye. Try something different. Mexican fusion, global flavors, happy hours. Neon cactus Fairview. Mexican, but different. Exactly.
5: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
6: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
7: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.

आजकल ना इनविटेशन जो हो रहे हैं ना इवेंटों के, बड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो रहे हैं भाई। कोई डिजाइन ऐसे बना रहा है, कोई वैसे बना रहा है, खुलने में ऐसा होता है, खुलने में वैसा होता है। और उसके बाद एक नया ट्रेंड चला हुआ है जी कि ड्रेस कोड होता है। ड्रेस कोड चलो ठीक है, होता है, पर यार बातें ना स्पष्ट करनी चाहिए। अब जैसे इन्विटेशन कार्ड में लिखा था कि ब्राउन टाई ओनली, ठीक है जी, ब्राउन टाई पहन कर आना है। अब पप्पू चला गया पार्टी में ब्राउन टाई पहन के, वहाँ जाकर घबरा गया देख के, क्योंकि बाकियों ने ब्राउन टाई के साथ शर्ट पैंट भी पहने हुए थे यार। ऐसे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए, ट्रंप के होते हुए ऐसा नहीं। स्पष्ट शब्दों में लिखना चाहिए क्या चक्कर है भाई। इंग्लैंड और इंडिया का मैच शुरू होने वाला है परसों, हाँ जी, 5 T20 खेलेंगे। वैसे तो इनको बड़ा अच्छा लेसन दिया गया, ये जो तड़ी में चलते हैं ना, हमारे प्रॉब्लम ही हमारी देशियों की है, थोड़ा सा अच्छा खेला नहीं है, बस हवा आ गई, हवा खराब। अब हवा खराब देखो, आयरलैंड ने 2 फटके मारे बैक टू बैक, धोकर रख दिया इंडिया को, और इतने धुरंधर बैट्समैन होने के बावजूद। और दूसरी बात बताओ कि सूर्यवंशी लेके गए, खिलाया क्यों नहीं तुमने, हैं? पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स और कुत्ते के टिक्स, ये दोनों कभी जाने नहीं वाले।

0: देखो यार, छुट्टी किसको नहीं पसंद, छुट्टी सबको पसंद है। छुट्टी छुट्टी छुट्टी कोई लहर दिल में उठी, ऐसी सी लहर उठती है ना, बंदा खुश सा हो जाता है छुट्टी वाले दिन। पर खुशी तब टूट जाती है जब बीवी और मर्द की, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ की छुट्टी सेम दिन हो जाए ना। वैसे कईयों की होती है। और उस दिन क्या होता है कि छुट्टी वाले दिन ना बीवी की आंखें उस ठेकेदार की तरह होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर समझते हो, ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर जो घर वगैरह बनवाते हैं ना, बिल्डिंग वगैरह बनवाते हैं। तो बीवी की आंखें छुट्टी वाले दिन अपने पति को देख के उस ठेकेदार जैसी हो जाती हैं जिसकी लेबर खाली बैठकर बीड़ी पी रही होती है। बाई गॉड, ऐसा सा उनका शक्ल बनती है जैसे हम उनकी लेबर हैं और हम बेले बैठे बीड़ियां फूंक रहे हैं। बस इसी फीलिंग में होती है बीवी। पर आपको ऐसी फीलिंग ना आए इसलिए आपकी छुट्टी है जब आप बीवी को भेजोगे कहाँ, पीएमजे जूल्स। ठीक है जी, बीवी को पीएमजे जूल्स भेज दो, आप अपने दोस्त के साथ बियर शेयर टिकाओ, मजे लो जिंदगी के, दोनों खुश, वो खुश तुम खुश। कभी कभी ये जो दूरियां है ना, ये ना हो की दूरियां बना के रखा करो। एक्सप्लोर स्टनिंग गोल्ड डायमंड एंड ब्राइडल कलेक्शन फॉर एवरी सेलिब्रेशन एंड माइलस्टोन। ज्वाइन द ग्रैंड ओपनिंग सेलिब्रेशन जो कि स्टार्ट हो चुकी है, 20th ऑफ जून दे ओपन द स्टोर। नाउ यू कैन एंजॉय सम एक्सक्लूसिव ऑफर्स, एक्साइटिंग फेस्टिविटीज एंड चांसेस टू विन ब्यूटिफुल ज्वेलरी पीसेज। दे आर प्राउडली एसोसिएट विद महेश बाबू एंड सितारा गत्तना मेमी। पीएमजे इज अ नेम ट्रस्टेड बाय जनरेशंस। विजिट पीएमजे ज्वेलर्स इन फ्रिस्को ऑन मेन स्ट्रीट एंड डिस्कवर ज्वेलरी दैट टेल्स योर स्टोरी। तो अब जब बीवी देखे आपकी तरफ, क्या वे बेवरे, मतलब बेले, बेवड़े नहीं, अभी वेले तू बैठा है, तो उसको ऐसा कहने से पहले उसको बोलो येलो कार्ड, वो रहा पीएमजे ज्वेलर्स, गो एंड हैव अ गुड टाइम मैन।
1: म्यूजिक टीचर।
0: एक लड़के का फोन आया मेरे पास। दैट लड़का इज एबीसीडी, मतलब अमेरिकन बॉर्न, अब कंफ्यूज नहीं, अमेरिकन बॉर्न काम देसी, ठीक है, एबीसीडी। तो उस बच्चे ने क्या किया, मुझे कहता है भाई मेरा नाम है ग्रंथ। भाई नाम बहुत अच्छा ग्रंथ तुम्हारा, पर ग्रंथ हिंदी कम बोलता है यार। फिर कहता पर आई स्पीक लिटिल लिटिल, मुझे कुछ गाने अच्छे लगते हैं। तो ग्रंथ जैसे और बच्चों को मैं ये बोलूँगा, और हिंदी गाने सुनो, और फनेशिया रेडियो सुनो, और सुनते सुनते हिंदी भी सीखो, और अपने गानों के मजे भी लो, और मार्विन से बात कर लिया करो कभी कभी, हमें भी अच्छा लगेगा। बट दिस वन्स फॉर यू ग्रंथ, द टाइटल ट्रैक फ्रॉम द मूवी धुरंधर। और आप लोग याद रखिएगा, दिस वीकेंड नो आई साइट प्रॉब्लम गोइंग लेफ्ट एंड राइट, ओनली पीएमजे जूल्स।

taken from the movie Dhurandhar. This was the title track from that very movie. अगर कभी कभी आपको गलत फहमी हो जाए ना कि बहुत से लोग आपको पसंद करते हैं, बहुत से लोग आपके कहने पे एक ही इशारे में खड़े हो जाएंगे, तो फ्रिज है ना, फ्रिज में ठंडा पानी होता है, वो निकालें, उससे थोड़ा सा मूड होए और वापस रियलिटी में आ जाइए, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ही लोग होते हैं जो आपके सीरियसली अपने होते हैं, जो आपके सीरियसली चाहते हैं कि तरक्की हो, सब कुछ अच्छा हो. दे आर वेरी फ्यू. सो डू नॉट ब्लाइंडली जस्ट फॉलो द यू नो शीप वाला जुगाड़मेंट कि हाँ मैं करके चलते जाए. नहीं, बी अवेयर यार, आपको खुद पता है कौन आपके अपने हैं कौन नहीं, एंड फोकस मोर ऑन द अपने. बाकी जाने दो टपने, कोई चक्कर नहीं है. अगर मैं लेके चलूँ आपको अगले गाने की तरफ, तो उसके साथ साथ ब्रेक पे भी जाएंगे और उस ब्रेक के बाद वापस आएंगे. आई विल टेल यू अ लिटल मोर एंड देन द लास्ट सेगमेंट ऑफ माय शो विल बी देयर फॉर यू टिल 7 o'clock दिस इवनिंग. लेट्स टेक यू टू दिस नेक्स्ट ट्रैक और उसके बाद चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ. दिस इज अ ट्रैक दैट रियली टुक अस बाय स्टॉर्म एंड एवरी वेडिंग, हर जगह ये गाना जरूरी कंपल्सरी हो गया था बिडू.

पहली बार मोहब्बत की है, आखिरी बार मोहब्बत की है, जिसने भी मोहब्बत की है उसने अकेले बैठ के ना जिंदगी में जरूर सोचा है और अपने दिल से पूछा है कि वाकई यार दिल तू ये बता कि प्यार होता क्या है? है आपने अपने दिल से कई बार पूछा होगा, कईयों ने सुन लिया होगा, कईयों ने नहीं सुना होगा। दिल ने बोला था देख मेरा काम है तुझे खून सप्लाई करना, फालतू की बातों में मेरा टाइम बर्बाद मत किया कर।

0: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducktime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
3: Mamu, देखो क्या हो गया?
4: ओ क्या हो गया?
3: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
4: ओए जर्मन का कमाल है।
3: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
4: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623, कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा यार।
5: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
6: हेलो टेक्सस परिवार, वेयर डू यू गो व्हेन बैंक सेज नो? आर यू सेल्फ एम्प्लॉयड एंड आर यू स्ट्रगलिंग विद योर क्वालिफिकेशन? Yes, we have loan options for you. So call कीजिए कामना को at 214-845-4189 क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 926641.
7: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
8: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
7: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
8: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
9: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
2: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
9: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
10: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
11: तोहफा हो या यादें, पहुंचाइए प्यार. इंटरनेशनल शिपिंग मेड सिंपल विद SFL Worldwide. SFL Worldwide, delivering connections and smiles.
12: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
13: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
14: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
15: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी.
16: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
17: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
16: नहीं.
17: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
16: नहीं.
17: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
16: वो भी नहीं.
17: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
18: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy.
19: AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
20: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
21: इंडिया में?
11: तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
20: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
20: सच में सब संभालेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
21: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

जैसे कि आपने सुना ये वाला गाना, क्योंकि आप सुन सकते हैं, आपके कान लगे हैं, और गाने सुनाता रहूंगा जी मैं आपको 7 बजे तक. दिस इज योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो. वेलकम बैक. टुडे इज मंडे इवनिंग, June 29, 6:49 एट द स्टूडियो क्लॉक. जस्ट अ फ्यू मिनट्स बिफोर आई लीव दिस स्टूडियो फॉर द नेक्स्ट आरजे, एंड दैट्स गोना बी एपी द हिप्पी एंटरटेनिंग यू ऑल द वे टिल 10 o'clock, 7 to 10. आजकल वो आ गई हैं जी यहाँ पे, एंड शी इज अ न्यू एडिशन टू द फैमिली, बट अ डिफरेंट एडिशन. एंड अगर आपने उनको सुना है देन यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. नहीं सुना है तो आप स्टे ट्यून्ड रहिए, सुनिए उनको, एंड यू विल गेट टू नो व्हाई यू शुड लिसन टू हर. दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटैक्स. इफ यू हैव नॉट डन योर टैक्सेस येट, और यू आर लुकिंग फॉर समबडी हू कैन हेल्प यू विद योर टैक्सेस, योर अकाउंटिंग, योर बुक कीपिंग, द 9 ईयर्स देयर, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपकी टैक्स प्लानिंग कर दी जाए, या आप चाहते हैं कि आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग हो, दे विल डू इट ऑल. एंड दैट इज वन नेम, वन स्टॉप शॉप, agfintax.com. That's agfintax.com. Taking you to the next track. पर आजकल ना उम्र में मतलब ऐसी जगह पहुंच गए हम लोग, उनमें से आप भी मेरे साथ ही हो, कई लोग बॉर्न इन द 80s, लेट 80s, अर्ली 80s, लेट 70s, अर्ली 90s. अब हम ऐसी उम्र में आ गए हैं दोस्तों कि एक तरफ भजन लगता है, सुनते हैं, रिलीजियस चीज़ें सुनते हैं तो शांति मिलती है, और अगर दूसरी तरफ ढिकचिक ढिकचिक बजता ना तो मज़ा भी आता है ब्रो. मतलब दिल में से मतलब आत्मा नाचने उठती है. सो वी लाइक बोथ. हमें भजन भी पसंद है, शांति, शांति तो वैसी पसंद थी, पर हमें हमें डीजे भी अच्छा लगता है यार.

अपनी अपनी ढुमकेश्वरी और अपने आप का इलाज आप कहां करवाते हैं? अगर आपने अभी तक अपना प्राइमरी केयर फिजिशियन यानी कि पीसीपी नहीं चुना है, देन गेट विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. दे स्पेंड 30 मिनट्स एट ईच विजिट. ये नहीं है कि आप पहले आ चुके हो तो अब हम आपसे 5 मिनट लगाएं. नहीं जी, 30 मिनट लगाते हैं ताकि समझ तो पाएं हो क्या रहा है, वही बॉडी के साथ चल क्या रहा है. पैशन हेल्थ केयर, एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स बिकॉज देयर यू नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर ट्रीटेड एज फैमिली. फॉर यू, योर फैमिली और सारी कम्युनिटी की हेल्थ के लिए दे आर हैविंग मल्टीपल लोकेशंस एंड वन मस्ट बी नियर यू. अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, इफ यू लुकिंग फॉर अ चेंज, देन दिस इज योर अपॉर्चुनिटी. इफ यू आर अ डॉक्टर, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन और साइकियाट्रिस्ट, और इफ यू नो एनीबॉडी हु इज लुकिंग फॉर अ जॉब, देन primary care physicians are being hired by Passion Health Primary Care. Not only physicians, but also psychiatrists, pediatricians, endocrinologists, and doctors. Give them a call or simply send your resume. PassionHealthPhysicians@gmail.com. That's PassionHealthPhysicians@gmail.com. Or you can text 217-454-4639 for more information. Passion Health Primary Care. Your health is their passion. Today marks the birthday of our टीनेज क्रश, स्कूल टाइम क्रश, शहनाज ट्रेजरी वाला याद है? इश्क विश्क प्यार व्यार, जी हाँ, उस फिल्म में जी, शहनाज ट्रेजरी वाला. टुडे मार्क्स हर बर्थडे. शी इज बोर्न ऑन टुडेज डेट इन द ईयर 1981 एंड शी बिलोंग्स टू मुंबई महाराष्ट्र. गोल्ड स्पॉट की एड में पहले आई, फिर आए अकाए फिलिप्स और MTV Network Asia hired her as a VJ on the MTV's Most Wanted program. Today marks her birthday and I'll play a nostalgic track for you all. This is from the movie Ishq Vishq.

एक्टिंग डेब्यू वॉज इन द 2001 तेलुगु फिल्म इदुरुलेनी मनीषी एंड उसके बाद बॉलीवुड फिल्म 2003 में आई थी इश्क विश्क। दैट टाइम आई वॉज इन लंडन यार, मतलब मेरी उम्र आज भी बहुत छोटी है, उस टाइम बड़ी छोटी थी, पर उस टाइम मैं लंडन में था और लंडन की फुल मतलब यू फील द वाइब यार, मतलब एक यंग मेरे जैसा हैंडसम लड़का लंडन की सड़कों पर और ये गाना और ये फिल्म आई हो, बड़ा मजा आया था। फिल्म फेयर अवार्ड मिला था उनको फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एंड वी विश शहनाज़ ट्रेजरी वाला वेरी ट्रेजरी राधा अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम द टीम हियर एट फनेजिया एंड फ्रॉम बंदा बिंदास। इसके साथ ही हो गया जी मेरा टाइम आज के लिए टाटा बाय बाय का, बट इफ गॉड गिव्स मी अनदर डे टुमारो आई विल थैंक हिम एंड बी हियर फॉर यू ऑल 5 to 7 PM विद योर फेवरेट इवनिंग ड्राइव टाइम शो जिसका नाम है जी द बिंदास शो, ब्रॉट टू यू बाय वेरी ओन बंदा बिंदास मार्विन दास ऑन योर फेवरेट स्टेशन जिसका नाम है फनेजिया रेडियो 104.9 FM। जाते जाते एक बात कह रहा हूँ आजकल और ये तब तक कहता रहूँगा जब तक सबके पास तक ये बात नहीं पहुँचेगी कि द फर्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, बी दैट आप लेडी हैं या लेडा हैं, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन इन द मिरर। द मोमेंट यू वेक अप टू द मोमेंट यू स्लीप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन शुड बी यू। बच्चे मेरे आगे हैं, बीवी मेरी आगे है, मेरे माँ बाप आगे हैं, नोप ये सब आपके पीछे है बिकॉज दिस एवरी थिंग दैट यू वॉन्ट टेक केयर ऑफ, आप इसीलिए कर रहे हैं ना कि आपकी फैमिली अच्छी रहे, उनको अच्छी हैप्पीनेस मिले, उनको अच्छा जॉय मिले। बट इफ़ यू आर नॉट वेल, अगर आपकी सेहत ही डामाडोल है, अगर आपके ही प्रॉब्लम्स हैं, यू आर हैविंग इशूज़ विद योर हेल्थ, एंड इफ़ यू आर हैविंग इशूज़ विद योर हेल्थ यू आर ऑल्सो हैविंग इशूज़ विद योर मेंटल स्टेटस बिकॉज दे आर कनेक्टेड। और अगर आप खुद को खुश नहीं रखेंगे तो आस पास को खुश रखना बहुत मुश्किल है। अ फ्लावर ब्लूम्स ताकि बाकियों को जॉय मिले, बट अगर वो फ्लावर ही थका सा होगा तो कौन उस फूल को देख के उसकी अट्रैक्शन या उसकी पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, आई अंडरस्टैंड फैमिली इंपॉर्टेंट है, वाइफ इंपॉर्टेंट है, माँ बाप इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए आपको टिप टॉप 100% परफेक्टली फाइन होना जरूरी है। एंड दैट इज ऑल इन योर हैंड्स, व्हाट यू ईट, व्हाट यू डू विद योर टाइम, दैट्स ऑल इन योर हैंड्स। और आपके हाथ में ही आपकी सेहत, कोई नहीं आएगा बचाने वाला, कोई नहीं आएगा यार दोस्त टॉफी देने, आपको खुद ही अपनी सेहत का ख्याल रखना है। सो मेक योर सेल्फ दैट प्रायोरिटी एंड सी हाउ लाइफ विल चेंज। आपके आस पास की चीज़ें खुद ब खुद ठीक होने लग पड़ेंगी, जैसे कि मेरे भी हाथ जब पियानो पे पड़ते हैं तो पियानो खुद ब खुद बजने लग पड़ता है सेनोरिटा। खैर विद दैट इट इज अडियोस, गुड नाइट, आई विल सी यू टुमारो 5 PM, अंटिल देन अडियोस।